0: मैंने 3/4 और शॉर्ट्स और ऊपर टी शर्ट पोलो टी शर्ट ये सारे थोड़ा सा कैजुअल आप पहनकर यूजुअली दे हैव टू वेयर सूट एंड ट्राउजर्स एंड फॉर्मल्स तो आप ये डिच कर सकते हो इस कैंपेन के उसमें. अब बंदियां जो है वो कह रही है कि ए ठीक है तुमने ये अलाउ तो कर दिया है बट द विजिबल लेग हेयर ऑफ मेन इन ऑफिस इज हैरेसमेंट टू अस.
1: जापानीज आदमियों के पाँव में इतने लेग होते इतने बाल होते हैं क्या? मुझे आइडिया नहीं है होते
0: दे आर लाइक कि बाल दिखते हैं उनके टांगों के एंड इट इज हैरेसमेंट एंड देन ऑफकोर्स दे आर ऑल्सो सेइंग कि भाई तुमने इनका तो चेंज कर दिया हम जो स्टॉकिंग्स पहन के हमको पूरा कवर होके आना पड़ता है व्हाट अबाउट अस भाई व्हाई इज इट गर्मी ओनली फॉर देम एंड नॉट फॉर अस.
1: आई एग्री सो आई थिंक उनको भी स्टॉकिंग्स पहनाओ या फिर लड़कियों को भी बिना पैंट के आने दो राइट दैट्स देयर डिमांड.
0: आई मीन इवन दे कैन कम इन कैजुअल्स एंड समथिंग व्हिच कैन दे कैन यू नो बीट द हीट.
1: आई एग्री लड़कियां वैसे भी स्कर्ट्स ही तो पहनती हैं उसमें काफी हवा चली जाती है नहीं. आई मीन व्हाट्स दिस डिमांड लाइक
0: बिकॉज दे वेयर द स्टॉकिंग्स वहां पे ऑफिसेज में जापान में दे आर वेरी स्ट्रिक्ट.
1: ओह माय गॉड भाई एक बात तो है मजा इस बात का आ रहा है कि हर जगह इक्वालिटी की डिमांड हो रही है. इट इज जस्ट फैंटास्टिक.
2: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: बुरी आदत, स्मोकिंग बुरी आदत, मतलब कभी कभी तो लोग क्या करते हैं कि पैकेट पर पैकेट, मतलब पता नहीं एक पैकेट में कितनी आती हैं सिगरेटें, शायद 20 आती हैं, तो दो दो पैकेट भी खत्म करते हैं, मतलब इस तरह की हरकतें होती हैं. इट इज टू बैड, सीरियसली मत करो ये हरकतें.
2: This is Masti Madness on Radio Masti.
3: Agree. बहुत ही गंदी गंदी चीज होती है. Smoking is injurious to health. You should never do it.
1: Absolutely. So अब टर्की में एक इंसान, एक आदमी, उसके जो फादर है ना, उनकी डेथ हो गई लंग कैंसर की वजह से, क्योंकि वो 26 साल तक ही वाज हैविंग टू पैकेट्स अ डे. ऑलराइट, सो एक्सट्रीम लेंथ तक ही वेंट, ऑफ कोर्स अपनी एडिक्शन हटाने के लिए, क्योंकि उसने अपने फादर की वो हालत देखी. उसने कहा ना बाबा, वो डर गया लेकिन उससे छूट नहीं रही थी. राइट, सो डी एडिक्शन सेंटर्स बड़े सारे होते हैं, तो उसने क्या किया, एक मोटरसाइकिल का हेलमेट जैसा एक केज बनाया कॉपर वायर से टू फिजिकली ब्लॉक एक्सेस टू हिज माउथ. ओके, कि मेरे मुंह तक कुछ जाए ही नहीं. तो वो अपने आप को रोज सुबह उस केज में बंद कर लेता था, और चाबी जो थी वो उसकी वाइफ और डॉटर के पास थी. एंड उसके बाद वो छोटे छोटे ओपनिंग्स जो थे ना वो केज के, तो वहां से वो सिर्फ ब्रीथ कर सकता था, और साथ ही साथ में स्ट्रॉ अंदर जा सकती थी और कुछ नहीं. और फिर उसका वो जो केज है मुंह के सामने वाला, उसको खोला जाता था ओनली ड्यूरिंग मील टाइम्स. अब उसकी मतलब इमेजिन, दैट इज द एक्सटेंट टू व्हिच ही वेंट. अब वो हुआ या नहीं हुआ उससे फायदा ये तो पता नहीं, और बंदे ने मेहनत खूब करी थी, ये बात तो माननी पड़ेगी. राइट, तुम्हें क्या लगता है?
3: इट्स अ गुड थिंग, मतलब एफर्ट तो दिख रहा है कि जब उसको, आपको खुद पता है कि आपको, आपसे नहीं रुका जाता ऑटोमेटिकली, सो उसको जो फिगर आउट वो कर पाया किया. आई एम श्योर इट्स ह्यूजली अनकंफर्टेबल फॉर हिम टू डू दिस एज वेल, बट रेस्पेक्ट.
1: बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट, सीरियसली. लेकिन बात ये है कि भाई तू डी एडिक्शन सेंटर पे चले जा, मतलब क्या जरूरत है कि ऐसे ताले बनाए, चाबियां लगाई, ये वो. वैसे एक बात है, अगर उसकी बीवी मैं होती तो चाबी तो मैंने घुमा देनी थी. चुप रह, ऐसे ही पड़ा रहे.

0: चार्ट्स टू रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: योर

0: भाई लाइफ बहुत ही अजीब हो जाती है जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि हाउ डिड दिस हैपन.
1: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज़ भी होती है गैस.
2: ये जिंदगी है बाबू मशाए, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ना तुम्हारी ना मेरी चलती है. वाह, रेडियो मस्ती 24/7 पर सिर्फ हमारी चलती है लेकिन, और ये है मस्ती मैडनेस और यही तो खुशी की बात है. बस कहीं ना कहीं तो हम इन कंट्रोल हैं. बताओ अंतरा, तुम बिल्कुल डरो मत, अगली खबर बताओ.
0: हाँ, खबर कुछ ऐसी मतलब थोड़ी सी सैड है, बट देन वही होता है कि अगर आपकी किस्मत में कुछ लिखा है तो वो कहते हैं ना, वो होके रहता है, चाहे आप कुछ भी कर लो.
2: बिल्कुल.
0: एंड नथिंग कैन स्टॉप इट, एंड आई कीप ऑन बिलीविंग इन इट व्हेन आई लिसन और हियर आउट इस तरह की चीजें. ये एक बंदा है, ही एक्चुअली ये गिरा 12वें माले से. ठीक है, 12वें माले से गिरा और नीचे जब गिरा तो एक बंदी के ऊपर गिरा.
2: ओके.
0: जो नीचे से वॉक करके जा रही थी, तो जब उसका फॉल हुआ तो वो बंदी के ऊपर फॉल हुआ.
2: राइट.
0: द बंदी डाइड, दिस गाय सर्वाइव्ड.
2: ओहो, वही बात है, जाको राखे साईयां, मार सके ना कोई. वाह, आज तो टाइम पे बात याद आ गई मेरे को. हाँ,
0: सही टाइम पे मुहावरा. बट देन इट्स क्रेजी, राइट? अब हाउ कैन समथिंग लाइक दिस हैपन, एंड देन यू काइंड ऑफ बिलीव कि जो लिखा है वो तो होके रहेगा.
2: बिल्कुल, एब्सोल्युटली. लाइक रिसेंटली वी वर टॉकिंग अबाउट दैट न्यूज़ जहां पर बंजी जंपिंग के लिए द वुमन इज गोइंग, ऑल हू हा हा हा, एवरीबॉडी एल्स वेंट नॉर्मल, राइट? बट शी वाज द वन जिसकी रोप डालना वो भूल गए, एंड शी डिड नॉट रियलाइज, वो उठा के उसको फेंक रहे थे नीचे विदाउट रियलाइजिंग कि इसकी तो रोप ही नहीं बांधी है. मतलब यू नो, इट्स लाइक दीज थिंग्स इन लाइफ वेयर वी जस्ट डोंट नो. जब आई है तो बेटा आई है. मगर तुम ही हो बंधु सखा हमारे और हम यहाँ पर बहुत खुश हैं. ठीक है ना अंतरा, तुम और हम हैं. लेट्स एंजॉय लाइफ, लेट्स स्माइल.
0: यस, ट्रू.
3: यू आर ट्यून्ड इनटू रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, कीपिंग यू कनेक्टेड एनीवेयर एनीटाइम द देसी वे.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: लाइफ की बात हो रही है तो कई बार ऐसा भी होता है कि यार मतलब हमारे साथ अजीबो गरीब हरकतें हो जाती हैं। हम अच्छे भले किसी पे ट्रस्ट करते हैं, सब कुछ होता है और फिर हमें लगता है कि नहीं यार, किसी पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता इस जिंदगी में, किसी पे भी नहीं।
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
3: ये तो आई थिंक लाइफ हमें अक्सर मतलब कुछ कुछ हफ्तों में ही सिखाती रहती है, आपको नहीं लगता?
1: बिल्कुल सही बात है, मेरी तो आंखें रोज ही खुल जाती है। अगर वाकई कहते हैं ना आंखें खुल गई और रोज रोज वो खुलती जा रही है और बंद नहीं हो रही, तो मेरे ख्याल से तो मेरे शरीर में सिर्फ आंख ही होगी जो खुलती चली जाएगी।
3: आई नो,
1: हाँ, टिल द एंड ऑफ टाइम। एनीवे,
3: एट टाइम्स ऐसा होता है कि रेणुका कुछ बता रही होती है एंड विद इन लाइक फ्यू डेज हमारे मेरी मैंने कहा व्हाट, अभी तो हम ये बात कर रहे थे, अभी ऐसा हो गया, ये मतलब चल क्या रहा है?
1: आई थिंक मेरी जिंदगी में कुछ ज्यादा ही एक्साइटमेंट है। नहीं अंतरा, तुम्हें नहीं लगता कि मैं कितनी कहानियां मतलब अपनी किताब लिख सकती हूँ मैं इस टाइम पर? Well, तो ये बात है एक चाइनीज डाइवर की, एन एक्सपीरियंस चाइनीज डाइवर जो कि सी के अंदर मालदीव्स में 40 मिनट तक बैठी रही, क्योंकि वो जो उसके साथ में इंसान था जो रेस्क्यू ड्राइवर डाइवर था वो उसको वहां भूल के चला गया। ठीक है, भूल गया मतलब बेसिकली शी वॉज ऑन अ डाइविंग ट्रिप टू द मालदीव्स अपनी एक फ्रेंड के साथ में। सितंबर में क्या हुआ था कि दे बुक्ड अ डाइविंग पैकेज और उसमें बड़ा हाईली रिकमेंडेड सा रिजॉर्ट है मालदीव्स में, बट व्हाट वाज सपोज्ड टू बी लाइक अ पीसफुल एडवेंचर वो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग सर्वाइवल ऑर्डील बन गया। जैसे ही डाइव शुरू होने वाला था उससे पहले ही थोड़े थोड़े आ रहे थे वार्निंग सिग्नल्स, मतलब कि हर ऑक्सीजन टैंक में यू नो इट शुड बी इक्विप्ड प्राइमरी सेकेंडरी रेगुलेटर, लेकिन उसने देखा कि ब्रोकन प्राइमरी रेगुलेटर था तो जो इंस्ट्रक्टर था उसने रिप्लेस नहीं किया, उसने बोला बैकअप रेगुलेटर यूज कर ले, यू नो लाइक दैट। देन फाइनली वो जब नीचे गए सब कुछ हुआ तो 40 मिनट तक वो जो इंस्ट्रक्टर था वो कहीं नहीं था, वो एक्चुअली उनको पानी में छोड़ के भूल के चला गया। Somehow they repeatedly submerged their face, physically exhausted, they decided to keep their water head above water, कोई बोट नहीं, कोई कुछ नहीं, how to come back, right? उसके बाद उन्होंने केस किया उस रिजॉर्ट पर, लेकिन वो केस चल रहा है, आफ्टर ऑल तुम तो टूरिस्ट हो, वहां तो रहते नहीं हो, राइट? एंड बाकी लोग जो रहते हैं वो बोलेंगे आ जाओ लड़ लो केस, राइट? दैट्स हाउ इट गोज। बताओ,
3: ओ भाई, दिस इज I cannot even imagine.
1: इसलिए डाइविंग छोड़ दो because I'm so bad at it, I don't want to talk about it.
3: I do absolutely have no clue about it, but exactly. I have a few friends who are very good divers and they have really done a lot of diving trips and everything. और मुझे हमेशा यही डर लगा रहता है कि भाई यही सेम कि अगर तुमको डाइव ट्रिप पे ऐसे कोई छोड़ के आ गया फिर then what?
1: GPS भी नहीं है यार, कैसे आओगे ऊपर?
3: Underwater it's so difficult to navigate also.
1: I guess so.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं आपका दोस्त अमीन सयानी बोल रहा हूँ।

कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता, जब कर लो बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति मेरे शेर मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा, तूने इतना बड़ा झोल कर दिया। बदतमीजी एक बीमारी है, ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है। मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते।

0: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
1: Check it out.
2: एक सिचुएशन मैं आपको देना चाहती हूँ. Tell me what would you do in it?
3: मैं तो हमेशा रेडी रहती हूँ सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए.
4: This is Musty Madness on Radio
3: Musty. Or that's what I think. Radio Musty 24/7 पर. जी हाँ, अंतरा जी आपको कुछ सिचुएशन दे रही है.
2: ये तो सबसे बड़ा झूठ है. रेणुका इज नॉट द वन टू रन अवे. लाइक शी विल मेक श्योर दैट यू हैव गॉट व्हाट यू डिजर्व. शी विल एंश्योर वॉच इट विद हर ओन आईज एंड देन उसके बाद भी श्योर नहीं है कि क्या हो सकता है. बट वेल, सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अगर आपका हस्बैंड जो है आप पे चीट करता है, ठीक है, एंड आपको पता लग जाता है
3: जी
2: ये चीट कर रहा है, बट इंस्टेड ऑफ लाइक bringing him out in the open and you know sabko bata diya, naam badnaam kar diya and everything, you choose ke kaam karo, aram se choose tum jaake jiske sath cheat karna hai, jiske sath date karna hai, karo. Just for every single date keep on paying me $60,000.
3: Hey, okay, not bad. I think it's a good deal.
2: You think?
3: Yeah, I think it's a good deal.
2: So this bandi, she did exactly the same. So he is like, for every girlfriend he has to pay $60,000. Also she has his card where matlab kisi bhi time wo koi bhi purchase kar sakti hai. Ki bhai tumko maine azadi de rakhi hai, tumhe shaadi rakhni hai, rakho, koi tension nahi hai, but meri zindagi mein interfere mat karo.
3: Bilkul,
2: main jahan jana hai jao, but for every relationship you are having just keep paying. I don't mind.
3: Aise hi hota hai jab ek bahut paise wala insaan hota hai jiske sath tumhari shaadi होती है, राइट, देन आफ्टर अ वाइल तुम्हारा मूड वूड तो इधर उधर हो गया, उसका भी मूड वूड इधर उधर हो गया, बट यू स्टिल आर नॉट गेटिंग अ डिवोर्स बिकॉज मेरे यार गोल्डन गूज है, क्यों छोड़ोगे तुम उसको? बाकी उसको जहां जाना है जाने दे यार. सानू की ना वो तुम्हें रोक सकता है, तुम भी कहीं भी जाओ.
2: रिसेंटली उसने फरारी खरीदी.
3: अंतरा ने पता लगाया नंबर क्या है.

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: और हमारे तीसरे घंटे में आपका स्वागत रेडियो मसी 24/7 पर। जी हाँ, 9 बजे के उस पार। अंतरा उठो, अभी तक तुम्हें नींद आ रही है।
1: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज
2: हाँ जी, आपने तो कॉफी पी ली है, मेरी बारी बाकी है।
0: तो तुम्हें
2: मुझे अपनी खुद बनानी पड़ेगी।
0: किसने? अच्छा, वो मेरी तो मैंने जैसे बड़ी तुमसे बनवाई है। हैं, मैं बना के ले आती हूँ, तुम काम करो, किसी भी तरह से काम करो। आजकल तो बेचारे बॉसेस यही करते, हाथ जोड़ के काम कर दो, बस काम कर। एनीवे मैं तुम्हें एक शादी पे ले जाना चाहती हूँ, ठीक है अंतरा? और उस शादी में जो कि केसी एंड हर फियोंसे एलेक्स के बीच में हो रही थी, दोनों 6 साल से साथ साथ थे। अब शादी से एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ कि वो होटल के कमरे में थी अपनी ब्राइड्स मेड्स के साथ में, और एक फोन आया जिस पर मल्टीपल स्क्रीन शॉट्स थे फ्रॉम एन अननोन नंबर। अब उस मैसेजेस में ग्राफिक्स एक्सप्लिसिट उसमें दिखाया था कि भाई जो एलेक्स है उसका कुछ महीनों से एक लंबा सा अफेयर चल रहा था विद अनदर वुमन। एंड अब ब्राइड्स मेड्स ने तो बोला शादी को कैंसिल करो केसी, जस्ट फिनिश इट ऑफ, व्हाट द हेल। पर उसने कहा मैंने तो पैसे दिए हैं भाई इवेंट के लिए, अब जाऊंगी तो मैं जरूर, ठीक है ना। तो उसने कहा, जैसे ही वो पहुंची मंडप में, अब मैं हिंदी वाला मंडप बोल रही हूँ, ऑब्वियसली शी रीच दैट प्लेस द ऑल्टर, एंड वहां जाकर उसने क्या किया, सबकी तरफ देख के बोला देयर विल बी नो वेडिंग टुडे, इट सीम्स एलेक्स इज नॉट हु आई थॉट ही वाज। और उसके बाद उसने वो फोन निकाला और सारे के सारे मैसेजेस पढ़ डाले सबके सामने।
2: क्या इस बंदी ने यही सेम चीज की होती अगर तो एलेक्स होता मल्टी मिलियनेयर?
0: देखो बहन, तुम क्यों अंदर से एक औरत की दूसरी तस्वीर निकलवाना चाहती हो जब वो अच्छा भला दुनिया में इज्जत के साथ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के वजह साथ जी रही है, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मेरे ख्याल से
2: उसका डिसीजन बदलता,
0: मेरे ख्याल से डिसीजन ये होता कि वो शादी कर लेती और फिर लगाती, ठीक है ना। और फिर वो भाई बोलता अब तुझे क्या चाहिए, तो भाई 50% बिल्कुल, और मैं खुशी खुशी चली जाऊंगी तेरी जिंदगी से, है ना, और क्या। ठीक है, इट्स ओके यार, इट्स ओनली लाइफ। देखो दूसरे बंदे ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, आफ्टर सम टाइम इन लाइफ यू रियलाइज कि कोई नहीं, हम भी कर लेंगे तो उसमें कुछ गलत नहीं है। क्यों भाई, तुम्हें क्या लगता है?
2: मेरे को क्यूरियोसिटी थी कि क्या क्या जनता क्या सोचती है।
0: जनता छोड़, तू क्या सोचती है ये बता।
2: There are two sides to it. मेरे को इतना कोई इतना शौक नहीं है, तो मैं तो मेरे को ये वाला ज्यादा है कि भाई सबको डिस्प्ले कर दो और अपना शान से निकलो, वहां से खत्म करो, मेरी जान छोड़ो।
0: तो बाद में भी कर सकते हो, शादी करो, पैसे लो और फिर सबको डिस्प्ले करके शान से निकलो।
2: Not my style.
0: ये ना आप लोगों के सामने नंबर बढ़ा रही है, अभी जैसे माइक ऑफ होगा मैं देखूंगी इसकी असलियत।
2: नहीं, मेरे को दूसरी वाली किस्मत चाहिए जहाँ पे मेरी लॉटरी लग जाए।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: भाई मैं सभी सभी यंग लोगों से कहना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज ये वायरल होने का फीवर ना प्लीज छोड़ दो। मुझे ऐसा लग रहा है इनके लिए भी अब नशा मुक्ति केंद्र बनाना पड़ेगा कि इनको भेज दो। अब इनके एडिक्टेड हो चुके हैं ये ऐसी चीजें, हरकतें मत करो।
1: सांस ले ले अंतरा, सांस ले ले।
0: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है
1: गैस्ट्रोनॉमिक खबरों के लिए। जी हां, यहां पर रेडियो मस्ती 24/7 पर बात हो रही है वायरस की। एक जमाना था हम वायरस से दूर भागते थे, अब हम वायरस के पीछे पीछे भागते हैं। भाई तू मुझे पकड़ ले, वायरल हो जाऊं मैं। बट यू नो व्हाट, अंतरा की खबर सुनते हैं, बताओ बताओ।
0: I know, but then Renuka, I also realize I am so glad हमारे टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, because nobody has any idea or any history of what all we have done.
1: Actually, और वो राज को राज ही रहने दो, कोई नाम ना दो।
0: So when I see these kids doing these things and posting it because they want to everybody to know.

0: before. You know, it explodes.
1: Right, like, right. I've seen videos. Yes, yes.
0: Yeah. So, ab he took it to another level. भाई ने कोक में वेंटोल डाला लेकिन कोक बॉटल का ओपनिंग अपने बट
1: एंड
0: सो व्हेन ही एक्चुअली डिड दैट सो एज यू कैन इमेजिन बिकॉज द डायरेक्शन वाज देयर हाउ एंड व्हाट वुड हैव हैपेंड ही बाकी सारे बच्चे कैसे जाने बिकॉज ही वाज स्क्रीमिंग इन पेन इनसाइड द वॉशरूम फिर 911 को बुलाया गया बिकॉज ही वाज नॉट एबल टू स्टैंड अप आल्सो
1: ओह दैट बैड ओह माय गॉड क्यों कर रहे हो यार और ये सब कैप्चर हो रहा था उसके फोन पे वीडियो
0: एग्जैक्टली
1: बताओ आई थिंक नशे से चढ़ गई ही ये गाना सही रहेगा क्या कर सकते हैं यार
0: देयर इज नथिंग कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में चार दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है
1: और काफी लंबी अंधेरी रात है इसके केस में तो
2: Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page. Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out.

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: राइट, अगर हम और आप ये सोचते हैं कि भाई हमारी नौकरी में पूरा दिन निकल जाता है एंड इट इज नॉट पॉसिबल कि हम कुछ और कर पाए, तो वेल लेट मी टेल यू, आप अपनी हर किस्म की नौकरी को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और साथ ही साथ में ऑफ कोर्स आप अपना एक पैशन भी परस्यू कर सकते हैं, तो मजा आ सकता है राइट.
1: मस्ती मैडनेस जहां न्यूज भी होती है. ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये
0: थोड़ी इंस्पायरिंग बातें सुबह सुबह, मतलब फ्राइडे को. हाँ हाँ, व्हाई नॉट. तो यार मैं बड़ी अमेज्ड हुई ये वाली खबर पढ़ के. यू नो हाउ द डिलीवरी पीपल आर राइट, ग्रैब एंड ऑल दीज पीपल, दे जस्ट रनिंग, दे रियली वर्किंग हार्ड. उन्हें टाइम से पहुंचना है ताकि वो और ज्यादा डिलीवरीज कर सके दिन में, एंड देयरफॉर दे कैन अर्न मोर राइट, ऑल दैट. लेकिन हाल ही में एक डिलीवरी, फूड डिलीवरी राइडर फ्रॉम चाइना, उसको मिला अवार्ड और वो भी लिटरेरी प्राइज फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन. अब सबने कहा यार इसके डेली स्ट्रगल्स और ये वो के बीच में कहां टाइम मिल गया इसको पोएट्री के लिए अवार्ड मिलना, वो भी नेशनल लेवल. इट्स लाइक द लू शुन लिटरेरी प्राइज व्हिच इज ह्यूज राइट. सो वो क्या करता था, वो जो उसके फेलो गिग वर्कर्स है ना, जो ऐसे छोटे छोटे काम करते हैं, जो डिलीवरी करते हैं ये वो, ही इंटरव्यूड देम, अबाउट 200 ऑफ देम. ओके, काम करते करते व्हेन एवर ही इज मीटिंग देम, एंड दिस वॉज इन द फ्लीटिंग मोमेंट्स बिटवीन हिज डिलीवरी शिफ्ट्स, तुम सोचो. एंड वो कभी कभी यू नो जब ट्रैफिक लाइट्स हुआ पड़ा है तब वहां पर वो खड़े होके जल्दी से कुछ लाइन स्क्रिबल कर लेता था, उसके दिमाग में पोएट्री आती थी. तो देन एलिवेटर्स में होता था, रेस्टोरेंट के काउंटर्स पे खड़े खड़े जब तक खाना प्रिपेयर होके उसको दिया जा रहा है, द गाय वॉज जस्ट यू नो सो मच इन लव विद लिटरेचर कि वो कहता था मैं पोएट्री लिख लेता हूँ, ये कर लेता. एंड देन ही कलेक्टेड ऑल दैट, ही एक्चुअली वन अ नेशनल अवार्ड. आई टेल यू दिस इज अमेजिंग.
1: Where there is a will, there is a way. आज कुछ ज्यादा मुहावरे नहीं आ रहे हैं और सब एकदम ऑन टाइम आ रहे हैं
0: और सही आ रहे हैं. ये नहीं कि कोई टेढ़ा मेढ़ा लगा दिया कहीं भी, है ना, जैसे हम नॉर्मली करते हैं. आज मेरे को बहुत एनलाइटनमेंट की फीलिंग आ रही है. मुझे लग रहा है आज अंतरा को ही फ्राइडे शाम का भी शो करना चाहिए, आज मुग्धा को छुट्टी देनी चाहिए, बिकॉज शी इज वेरी एनलाइटन टुडे, डोंट यू ऑल थिंक.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

Some stories are easy to tell, पर कुछ कहानियाँ दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। On Masti Media Network, we're opening a safe space. Dear Masti, दिल से, जहाँ आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल

0: पता नहीं थोड़ी देर पहले कुछ तो इन्होंने लास्ट की तरफ बोला, मेरे तो कान में कुछ गया ही नहीं. आप लोग के कुछ क्या? आई एम श्योर नोबडी हर्ड दैट राइट.
1: इनके गुड मॉर्निंग, इनके कान में गया कि तू आज शाम का शो कर रही है, इनके ही कान में गया है. मुझे अभी भी पता लगा मैसेज पर.
2: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7.
1: दिस इज मस्ती मैडनेस एंड अंतरा इज ऑल गियर्ड अप ऑन अ फ्राइडे बिकॉज मंडे टू थर्सडे कुछ खास काम करती नहीं है. फ्राइडे को इसकी थोड़ी नींद खुलती है, लगता है वीकेंड आ गया, तो बॉस पकड़ लेता है, बोलता बेटा आज नींद खुली है, कोई नहीं आज करो, जब जागो तब सवेरा.
0: There's some really, see, you cannot believe technology. आपको भी नहीं. There was like such a silence. Renuka, I think we need to, ये जो हमारे सारे equipments है, कुछ तो गड़बड़ है इसमें.
1: I'm sure.
0: Suddenly, when you were talking, अभी बात कर रहे थे ना, एकदम बिल्कुल साइलेंस चला गया था ऑन एयर, एंड इट्स सो बैड, डेड एयर नहीं जाना चाहिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल, बीप बीप हो रहा था, बीप बीप बीप ऐसे हो रहा था. हाँ हाँ, सबने कंप्लेन किया.
0: Let me continue so that, हाँ, at least मेरी आवाज में खबर चली जाए. So, without wasting any more time, बात कुछ ऐसी हो गई कि रोजिलियो जो है इनका नाम, ये जो है ये बड़े ही स्मार्ट अतरंगी हमारे टेक्सस के भाई साहब हैं. सो भाई ये अपनी वाइफ के साथ घर पे थे, बहुत ही आराम से बैठे हुए थे, चिल आउट कर रहे थे. अचानक से दो मास्क पहने आदमी आए गन्स के साथ. रात के 10:30 बज रहे थे, ठीक है, और भाई को किडनैप करके लेके गए. अब जो है शी, अब वाइफ ऑब्वियसली जो पेट्रिफाइड पूरी तरह से अथॉरिटीज को कॉल कर रही है एंड एवरीथिंग, शी विटनेस, शी थॉट दैट भाई ये तो अलग ही क्या हो गया मेरे साथ एंड ऑल दोस थिंग्स. बट हुआ कुछ ऐसा, दो दिन के बाद भाई अनहार्म्ड लौट आए
1: हैं.
0: हाँ, इट टर्न्ड आउट जब इन्वेस्टिगेशन हुआ कि ही एक्चुअली स्टेज्ड हिज किडनैपिंग so that he can go out and party with his friends.
1: Bichara.
3: अंगारों का अंबर सा लगता है मेरा सामने.
1: You know, कई बार करना पड़ता है लोगों को only because they're not getting that breather, right? And they have to hide and they have to lie and they have to do all these things. बहुत से आदमी करते हैं ऐसा काम.
0: लेकिन अब जो अंगारों पे उसको चलना पड़ेगा इसके खुलासे के बाद.
1: वो अलग बात है, वो अलग बात है, येट अगेन. बट यू नो व्हाट, अगर मैं पूछूं हमारे सुनने वालों से कि भाई ऐसा अगर इनके साथ हो कि भाई इनका हस्बैंड या इनकी वाइफ बिकॉज इनसे थोड़े दिन के लिए जान छुड़ाना चाहती है अपना ही किडनैपिंग स्टेज कर ले या कोई ना कोई बहाना बना के गायब हो जाए और उसके बाद पता लगे आपको, तो आप क्या करोगे, क्या करोगे? हाँ, इस वीकेंड पे यही सोचना, ठीक है.

0: Radio Musti 24/7. Download Radio Musti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.
1: अच्छा जी, तो फिर आज तो हमने बड़ी सारी खबरें करी है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमने कितनी सारी बातें बता देते, हम लाते कहाँ से हैं अंतरा, ये खबरें हम लाते कहाँ से हैं? आस्किंग द क्वेश्चन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल आवर लिसनर्स।
2: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
3: मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में नॉर्मल खबरों से ज्यादा अब क्रेजी खबरें ही है। नॉर्मल खबरें भी कौन सी कम क्रेजी है, आप ये बताओ।
1: एक्चुअली क्या डीप वाला मारा है, मैंने कहा ना आज इसकी एनलाइटनमेंट का जो लेवल है ना, इट इज एक्चुअली एट इट्स हाईएस्ट। मैंने कभी इसको इतना इंटेलिजेंट बातें करते नहीं देखा। मुझे पक्का लगता है कि आज इसको पूरे दिन शो करना चाहिए। मुझे
3: रेणुका, आई थिंक हमको ना मेरे को बोलना चाहिए, बिकॉज आई थिंक आपकी आवाज पहुंच नहीं रही है आज बाहर। सम इश्यू विद योर साइड ऑफ द माइक,
1: राइट? बट अंतरा, यू नो व्हाट, मुझे एक और रीजन भी पता है व्हाई यू आर सो इंटेलिजेंट टुडे। इस मंडे का तूने शो किया था ना, द मॉर्निंग शो है ना, उस वजह से। सो इफ यू वांट टू मेंटेन योर इंटेलिजेंस फॉर द रेस्ट ऑफ द वीक्स, आई डू सजेस्ट।
3: ओके बाय गाइस, ओके, आई थिंक आई रियली नीड टू गेट आउट ऑफ द स्टूडियो एज सून एज पॉसिबल, तो हैव अ हैप्पी वीकेंड, बिकॉज मैं इससे ज्यादा जो है डेड एयर वाला बहाना नहीं बना सकती। मैं चली इससे पहले कि मुझे और ज्यादा फ्रेम करके फाइनली मुझे फ्रेम जो कर दे, और मुग्धा तो खुशी खुशी मान भी जाएगी। ना ना,
1: चॉइस ऑफ वर्ड्स, द चॉइस ऑफ वर्ड्स। मैं कह रही हूँ अगर कोई एक टीम मेंबर अपने बॉस के सामने इतना कुछ बोल ले तो वाकई हुड़ हुड़ दबंग। ठीक है भाई, जैसे तुम्हारी मर्जी, बॉस को तो चलानी है ना कंपनी। चलो अच्छा भाई, तो मैं भी चलती हूँ। बाय बाय, हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड।
3: ओ मनी पार्वती,
1: मिलूंगी मंडे सुबह वही 6:30 बजे पहुंच जाऊंगी, 6:30 ते 6:30। ओके बाय।

सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वी आर ओपनिंग अ सेफ स्पेस डियर मस्ती दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस डियर मस्ती दिल

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: करण अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे
2: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
3: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
4: वेयर यू मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
5: चेक इट आउट
6: 1 2 3
3: Do take an hour off the world. Let unplugged melodies soothe your soul and spark your imagination. Musti Unplugged, the indie hour of pure musical bliss.
4: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
5: Check

0: की गल करनी है?
1: तेरे मेरे बारे
0: की?
1: बचपन तो लेके आज तक तू ही है।
0: बचपन की बात और सी।
1: पर 10 साल हो गए।
0: अच्छा मैं लेट हो रही हूँ, फोन ते गल करती हूँ।
1: अच्छा चल फिर फोन नंबर दे दे।

0: आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर

0: your passport to the world every Monday morning, from global headlines to a pinch of Bollywood spice. The Morning Show with Renuka, 7 a.m. Mondays.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mehra.
3: की शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday subah 7 baje sirf Radio Masti 24/7 Live par.
4: Mere Karan Arjun aayenge.
3: Na Karan Arjun aayenge, na hi RJs aayenge. Par haan to sirf super hit back to back gaane aayenge. Masti Music Cafe.

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन, फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: You're tuned into Radio Masti 24/7 Live, keeping the world Bollywood entertained anytime, anywhere.
1: छत पक्षियां रंगा दी धूप बरसाती सुन रंग धरती का गोटे रंगा है लहरिया दोनों को चाहतो न चाहतो से मारा इशकारा इशकारा इशकारा इशकारा।

0: समर के साथ सुनते रहिए, जानी पहचानी से कुछ अनजान धुने, मस्ती गीत माला में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: कोई जब राह न पाए मेरे संग आए, कि पग पग दीप जलाए मेरी दोस्ती मेरा प्यार, मेरी दोस्ती मेरा प्यार। और मैं तो ही आपका दोस्त समर, आपका स्वागत करता हूँ मस्ती गीत माला के सनों के और एक और नए एपिसोड में। आज हम दोस्ती की बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छे, सिंगापुर सारू छे, अखा सिंगापुर मारू छे। आज हम दोस्ती की बात क्यों करेंगे, क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, हर एक दोस्त जरूरी होता है। कहते ना, यू कैनॉट चूज योर रिलेटिव्स बट यू कैन चूज फ्रेंड्स। सो अपनी मर्जी से सोच समझ कर अपने दोस्त बनाए जनाब। एक ऑप्शन तो मैं ही हूँ आपके सामने, कितने सालों से आपके साथ। अच्छा, जब बॉलीवुड की बात हो और दोस्ती की बात हो, तो मुझे ऐसे दो दोस्तों की कहानी याद आ जाती है जो 8-9 साल की एज से साथ रहे। तब एक वायलिनिस्ट था और दूसरा मैंडोलिनिस्ट। उन्होंने बहुत सारा संगीत रचा और जब दोनों में से एक इस दुनिया में नहीं रहा, तो दूसरे ने संगीत रचना ही बंद कर दिया। किसी बीमारी ने पकड़ लिया, अल्कोहल पीना शुरू कर दिया, तंबाकू खाने लगा, बहुत अकेला हो गया। कैसी अतरंगी साधना है ना दोस्ती की, अमेजिंग। ये दोनों दोस्त मिलकर बनाते हैं एक म्यूजिकल जोड़ी, नाम रखते हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल। हालांकि लक्ष्मी जी जल्दी गुजर गए, मगर प्यारे लाल जी के साथ वो हमेशा महसूस किए जाते रहेंगे। रंजीत स्टूडियो में काम करते थे लक्ष्मी जी, यही हुई थी दोनों की मुलाकात और नींव पड़ी एक मजबूत दोस्ती की। लक्ष्मी जी उस वक्त पंडित हुस्न लाल भगत राम के साथ काम कर रहे थे। बीच बीच में वो प्यारे जी के पास आते जाते, दोनों वहां संगीत के बारे में बात करते, साथ लंच करते, क्रिकेट खेला करते। दोनों एक ही उम्र के थे तो दोनों का संसार एक सा था, आसमां का विस्तार भी एक जैसा। वो दोनों बस उसी में अपनी दोस्ती को जीने लगे। दोनों ने अपने नाम से जब एक साथ काम करना शुरू किया, तो अक्सर लोग सोचते थे कि ये कोई एक ही नाम है। प्यारे लाल जी ने एक दफा बताया था कि जब उनकी शादी होने वाली थी, तो उनके ससुराल वालों ने सोचा कि उनकी बेटी की शादी लक्ष्मीकांत प्यारे लाल से हो रही है, न कि सिर्फ प्यारे लाल से। सोचिए इनका नाम किस कदर जुड़ गया था एक दूसरे के साथ। मेरा तो जो भी कदम है वो तेरी राह में है, कि तू जहां भी रहे मेरी निगाह में है। आइए आपको भी ये ब्यूटीफुल ट्रैक सुनाता हूँ फिल्म दोस्ती से। मैं लौट कर आता हूँ, बहुत सारी बातें हम करेंगे ऐसी ही दोस्ती पर। आप बने रहिएगा रेडियो मसी 24/7 लाइव पर आज के इस खास एपिसोड में अपने समर के साथ।

स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।

0: रेडियो मस्ती पर आप समर के साथ सुन रहे हैं मस्ती गीत माला।
1: सामने ये कौन आया।
2: वेलकम बैक, मैं हूँ समर। मस्ती गीतमाला के सफर पर आप और मैं दोस्त हैं, है ना? आप और हम दोस्त, और इसी दोस्ती की खातिर मैं चलाता हूँ आपके लिए मस्ती गीत माला लेकर। अब मेरे पास है बंगाल के दो सुरीले कलाकारों की यारी दोस्ती की कहानी, जिन्होंने खूब साथ में काम किया, कभी किन्हीं बातों पर गिले शिकवे भी हुए, पर भाई तो भाई होता है ना, समझ रहे ना यारी दोस्ती और भाईचारा कैसा होता है। दोनों का बड़ा ही गहरा कनेक्शन रहा। मशहूर गीतकार और संगीतकार हेमंत कुमार और संगीत निर्देशक सलिल चौधरी जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो इनकी दोस्ती के किस्से के साथ इनकी दोस्ती में आई तकरार की बात भी मैं आप तक पहुँचाऊंगा। दोनों ने बंगाली सिनेमा में बहुत काम किया और हिंदी फिल्मों में भी। दोनों ही इप्टा के लिए काम करते थे और इसके बाद बांग्ला फिल्मों में म्यूजिक देने लगे। हेमंत दा ने सलिल दा की बहुत मदद की, कभी भी कुछ भी हो सबसे मिलवाते और कहते कि ये मेरा छोटा भाई है, ये गाना इसने बनाया है। वक्त बदला, हेमंत दा बॉम्बे चले गए, फिर सलिल दा भी बॉम्बे आ गए। यहाँ आकर भी दोनों ने साथ काम किया, लेकिन वक्त एक सा रहता नहीं है ना। एक ऐसा वक्त भी आया जब सलिल दा और हेमंत दा के बीच लोगों ने बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी थी, लेकिन वो लोग आपस में फिर बात कर लेते थे, पर कभी कभी गलतफहमी की खाई बड़ी भी हो जाती थी। हेमंत दा ने कुछ सालों बाद कलकत्ता का रुख कर लिया था। वहां आकर उन्होंने एक बार एक नए म्यूजिशियन के साथ सलिल दादा के 10 गाने री रिकॉर्ड किए, एक LP लॉन्च कर दी। सलिल दा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक चीज उनके दिल में रह गई, आखिर हेमंत ने ऐसा क्यों किया, उन दोनों के पुराने गाने री रिकॉर्ड कर लिए। फिर काफी लंबे अरसे तक, यही कोई 8 साल बाद दोनों मिले। तब सलिल चौधरी इससे पहले हेमंत दा को कुछ कहते, हेमंत दा खुद ही बोले, सलिल मैंने फिर से तुम्हारे गाने गाए उससे पहले कि मेरी आवाज खराब हो जाए, क्योंकि मुझे लगा कि वो इतनी अच्छी कॉम्पोजिशंस थी कि उस वक्त मैं उनको समझ ही नहीं पाया था। अब जब म्यूजिक का इतना ज्ञान हो गया है तो इनजस्टिस ना हो तुम्हारे म्यूजिक के साथ, इसलिए मैंने गा दी। सलिल दा फिर कुछ नहीं बोल पाए, बस यही कहा मेरे हेमंत दा। इसी बात पर दोस्ती के नाम पर कुछ और गाने हो जाए। सुनिए और वापस लौट कर आइए, समर के साथ रहिए। कुछ कहना है तो हमारे फेसबुक पेज पर आकर जरूर कहिए, अच्छा लगता है हमें, दोस्त हैं अपन, कह सकते हैं। आइए आइए।

0: समर के साथ सुनते रहिए, जानी पहचानी से कुछ अनजान धुने, मस्ती गीत माला में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: A friend in need is a friend indeed. इस फ्रेज को बहुत ही सही साबित करती आई है बॉलीवुड के दो एक्टर्स की यारी, जो बॉलीवुड में बहुत ही पॉपुलर रही, और ये थी अमिताभ बच्चन साहब और अमजद खान साहब की जोड़ी। वेलकम बैक, मैं हूं समर, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आज फ्रेंडशिप डे स्पेशल शो सुन रहे हैं आप मस्ती गीत माला का, और मैं अभी आपको अमिताभ बच्चन साहब और अमजद खान साहब की दोस्ती का किस्सा सुना रहा था। फिल्म कुली के सेट पर अमित जी का जब एक्सीडेंट हो गया था तो वो हॉस्पिटल बेड पर थे, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। तब एक बंदा जो हर वक्त उनके साथ मौजूद रहा, उनके आसपास ही रहा, हॉस्पिटल से घर भी नहीं गया, वो थे अमजद खान साहब। लेकिन कहते ना, बस वही प्यार है जिसके बदले में कोई तो प्यार दे। प्यार अमित जी को भी था अमजद खान साहब से। 1976 की बात है, फिल्म द ग्रेट गैम्बलर की शूटिंग चल रही थी गोवा में। अमजद खान साहब अपनी फैमिली के साथ कार से मुंबई से गोवा जा रहे थे। वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे कि अचानक ही उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, उन्हें गोवा ले जाया गया। एक्सीडेंट बहुत भयानक था, अमजद खान साहब बिल्कुल मौत के किनारे पर आ गए थे। ऐसे में अमित जी वहां पहुंचे, अपने सारे शूट कैंसिल कर दिए उन्होंने, अस्पताल में रहे जब तक ऑपरेशन चला और जब तक अमजद खान साहब को होश नहीं आ गया। इसे कहते हैं यारी, अतरंगी यारी। वेल, मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ याद आ रही है। एक दफा अमिताभ बच्चन साहब के घर पर अमजद खान साहब आ पहुंचे तो उनके बेटे अभिषेक बच्चन उस वक्त काफी छोटे थे। वो झट से पापा को बुलाने पहुंचे और उनके पीछे दबक कर बोले, गब्बर सिंह आया, गब्बर सिंह। तब अमिताभ बच्चन ने उन्हें समझाया था कि वो एक फिल्म थी, डरने की कोई बात नहीं है। खैर, ये तो मजाक की बात थी। अमजद खान साहब की म्यूजिक डायरेक्टर आरडी बर्मन साहब के साथ भी बहुत ही कमाल की दोस्ती थी। अमजद खान साहब एक काफी अच्छे दोस्त थे, काफी अच्छे इंसान थे। उनके एक और बढ़िया मित्र थे कादर खान साहब। अमजद खान साहब अक्सर कहा करते थे कि मैं अपने दोस्तों के लिए जान तक दे सकता हूँ। तो चलिए, इनकी दोस्ती को सलाम करते हुए यहाँ पर एक ब्रेक ले लेता हूँ। इस ब्रेक में मस्त वाले गाने सुनिए और वापस लौट कर आइए मस्ती गीत माला पर। आप हैं समर के साथ, दोस्ती पक्की अपनी? हाँ तो पक्की रखिएगा, मैसेज कीजिए और ज्यादा पक्की हो जाएगी।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ,
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

वेलकम बैक, मैं हूँ समर रेडियो 24/7 लाइव पर यारी दोस्ती की बात लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। आप सुन रहे हैं मस्ती गीत माला। देखिए, बॉलीवुड में हमने अक्सर राइवलरी के किस्से सुने, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ ऐसा ही होता है। यारी दोस्ती भी होती है और बहुत तगड़ी होती है, बहुत जबरदस्त होती है। आज हम ऐसी यारियों की बात कर रहे हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में 6 हीरोइंस एक दूसरे की बहुत बढ़िया दोस्त थी? नंदा, आशा पारिक, साधना, हेलेन, शम्मी एंड वहीदा रहमान हॉलीडे पर भी साथ जाती थी अक्सर। हम उन्हीं में से दो की बात करेंगे, नंदा जी और वहीदा रहमान जी की। हाँ जी, इन दोनों की मुलाकात फिल्म काला बाजार के सेट पर हुई और दोस्ती की शुरुआत भी ऐसे हुई कि एक रोज नंदा आई तो वहीदा जी सेट पर थी। नंदा ने उनको स्माइल दी मगर वहीदा जी ने कोई रिप्लाई नहीं किया। इस पर नंदा जी को लगा कि शायद वो इंटरेस्टेड नहीं है बातचीत करने में। बहरहाल, एक रोज लंच में वहीदा जी आई नंदा के पास, उनको अपना खाना ऑफर किया और इस पर नंदा जी ने कह दिया कि तुमने तो मुझे स्माइल का जवाब तक नहीं दिया था। इस पर वहीदा जी बोली कि वो उस समय बहुत बिजी थी, उनको रजिस्टर नहीं कर पाई। बहरहाल, इसके बाद वो दोनों बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई। वहीदा जी का कोई दोस्त भी नहीं था, इवन उनकी बहनों की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। हर वक्त काम काम काम, ऐसे में उनका साथ दिया नंदा जी ने। इन लोगों की दोस्ती हो गई, साथ घूमते फिरते थे। अच्छा, इवन जब वहीदा जी की किताब लॉन्च हुई तब वो बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि नंदा बहुत याद आई थी उन्हें। उन्होंने कहा था कि उनका और नंदा का रिश्ता बहुत गहरा है, 55 साल की दोस्ती थी। ये किताब पहले ही लॉन्च करने वाले थे वो लोग, लेकिन इससे ठीक पहले, 2 दिन पहले ही नंदा गुजर गई थी, तब ये प्रोग्राम टाल दिया गया था। नंदा जी बहुत ही बढ़िया कुक थी और जब भी दोनों मिलते एक दूसरे से बातें करते, साथ साथ कुछ पकाते भी थे रसोई में। वहीदा जी नंदा जी को अपनी सोल सिस्टर भी कहा करती थी। वेल, इसलिए अब आप ये मत कहिएगा कि सीम प्रोफेशन में लोग एक दूसरे के दोस्त नहीं होते। अब देखिए ना, मैं और अंतरा भी कितने अच्छे दोस्त हैं और अंतरा और रेणुका तो कमाल की दोस्ती है इनकी, है ना। तो यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में दोस्ती का गाना आएगा और उस पार आएगी किसी और फिल्म की बात। अच्छा सुनिए, हेलो, रोनी और मैं भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप क्या सोच रहे हैं? यूं ही नूपुर से हमारी दोस्ती के किस्से कभी और सुनाएंगे, अभी गाने सुनिए।

0: ये रात तो अपनी है पर एक ख्याल किसका है। ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है।
1: मुझे चांद पे ले चलो।
0: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर हर रोज 11 बजे ट्यून इन टू
1: रात अकेली है। जोश में रहो।
2: They are fresh. They are hot. They are happening. From rocking the charts to ruling the countdown. Yeah, musty top 20. Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards. The latest and the brightest. The week's top chart buster.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
3: समर के साथ सुनते रहिए जानी पहचानी से कुछ अनजान धुने मस्ती गीत माला में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
4: बॉलीवुड में दोस्तों की कहानी कोई नई नहीं है। वेलकम बैक, ऐसी ही कहानियां ऐसे किस्से लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। समर है मेरा नाम, रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर आप सुन रहे हैं फ्रेंडशिप डे स्पेशल मस्ती गीत माला। वैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई है गुरुदत्त और देवानंद साहब की, है ना। दोनों को बॉलीवुड में सफल दोस्तों की पहली जोड़ी माना जाता है। दोनों की पहली मुलाकात पुणे के प्रभात स्टूडियो में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही धोबी के यहाँ धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से गुरुदत्त साहब की कमीज देवानंद के यहाँ और उनकी कमीज गुरुदत्त के यहाँ पहुँचा दी। मजे की बात यह कि दोनों ने वो कमीज पहन भी ली। जब देवानंद स्टूडियो में घुस रहे थे तो गुरुदत्त साहब ने उनका हाथ मिलाकर स्वागत किया और अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं निर्देशक बेड़ेकर का असिस्टेंट हूँ। अचानक उनकी नजर देवानंद साहब की कमीज पर गई। वो उन्हें कुछ पहचानी हुई सी लगी और उन्होंने छूटते ही कहा, ये कमीज आपने कहां से खरीदी। देवानंद थोड़ा सकपका गए लेकिन बोले, ये कमीज मेरे धोबी ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब आप भी बताएं कि आपने अपनी कमीज कहां से खरीदी। गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में जवाब दिया कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों एक दूसरे की कमीज पहने हुए जोर का ठहाका लगाते हैं, एक दूसरे से गले मिल जाते हैं और हमेशा के लिए दोस्त हो जाते हैं, पक्के वाले दोस्त। दोनों ने साथ मिलकर पूना शहर की खाक छानी और एक शाम गुरुदत्त साहब सुरूर में थे। उन्होंने वादा किया, देव अगर कभी मैं निर्देशक बनता हूँ तो तुम मेरे पहले ही रहोगे। देव साहब ने भी उतनी ही सीरियसली जवाब दिया, और तुम मेरे पहले निर्देशक होगे अगर मुझे कोई फिल्म प्रोड्यूस करने को मिलती है। देवानंद साहब को अपना वादा याद रहा और जब नवकेतन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त साहब को दी। इसी तरह गुरुदत्त जी ने भी अपनी सुपरहिट फिल्म CID में देवानंद को अभिनेता के तौर पर काम दिया। तो चलिए इसी बात पर इनकी दोस्ती को सलाम करते हुए, अपनी दोस्ती को याद करते हुए कुछ और गाने सुन लीजिए। आइए आइए, और अपनी दोस्ती को समर्पित करना है कुछ कुछ कहना, दो चार लाइन्स कह सकते हैं आप, हम दोस्त हैं, हमारे फेसबुक पेज पर आकर कहिएगा, हमें अच्छा लगेगा।

को कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे पीछे बिल्ली पीछे बिल्ली चूहा आगे।

Passionate husband, fighter wife. बीवी बिगड़े, शौहर अकड़े, रोज के झगड़े, रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े

दिन बीवी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं, ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी देना।

बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है, वरना बीवी फिर मारेगी।

पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले, फिर दोनों ऐसे मिले, प्यार में ही डूब गए। प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार, जहां चारिया

0: 2 रूलिंग द काउंटडाउन, ये है मस्ती टॉप 20। नाउ पंपिंग अप योर थर्सडे इवनिंग्स 5 PM ऑनवर्ड्स, द लेटेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट, द वीक्स टॉप चार्ट बस्टर्स।
1: रेडियो मस्ती पर आप समर के साथ सुन रहे हैं मस्ती गीतमाला।
2: सामने ये कौन आया,
3: स्वागतम सुस्वागतम, एक बार फिर से आपका स्वागत कर रहा है दोनों बाहें फैलाकर आपका अपना समर रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे मस्ती गीतमाला। 1975 में आई एक फिल्म जिसने हिंदी सिनेमा के इतिहास को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। जी मैं बात कर रहा हूँ फिल्म शोले की। कुछ फिल्में होती हैं जो ऐसी छाप छोड़ देती हैं कि फिर सालों तक याद रखी जाती हैं, और हर दौर में एक दो फिल्में ऐसी आती ही आती हैं। कुछ इसी तरह की एक फिल्म थी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, वो है फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, जिसे आज के समय की शोले के नाम से भी लोग जानते हैं। इसी फिल्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा है दोस्ती का, आपसे शेयर कर रहा हूँ। कई एक्टर डायरेक्टर की दोस्ती फिल्मी गलियारों की शान बढ़ाती है, ऐसी ही एक और जोड़ी है फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप और एक्टर मनोज बाजपेयी की। एक इंटरव्यू में मनोज बाजपेयी बताते हैं कि ये बात है आज से 20-21 साल पहले की, जब दोनों ही इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे, अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। मनोज कहते हैं कि अनुराग कान के बड़े कच्चे हैं और लोगों की बात पर काफी जल्दी भरोसा कर लेते हैं, तो किसी ने उनके कान भरे होंगे, इंडस्ट्री में ऐसा होना बहुत ही आम बात है। और अनुराग ने उनकी ही सुनी बातों पर भरोसा कर लिया और मनोज से बात करनी बंद कर दी। और मनोज बाजपेयी का गुस्सा कहां किसी से छुपा था बोला। इस तरह से दोनों ने पूरे 11 साल तक बात नहीं की, और एक ऐसा दौर आया जब मनोज बाजपेयी की फिल्मों को 2-2 नेशनल अवार्ड मिलने के बाद भी कोई काम नहीं मिल रहा था। और ऐसे में उन्हें अनुपम खेर साहब की याद आई कि वो आज भी इतने कामयाब होने के बावजूद लोगों को फोन करके काम मांगते हैं। और मनोज ने जब फिर ऐसा किया तो उन्होंने एक के बाद एक बढ़िया फिल्में देखनी शुरू की और फोन लगाते गए। अब वेडनेसडे देखने के बाद उन्होंने नीरज पांडे को फोन किया और इस फिल्म के बाद उनकी दोस्ती हो गई थी जो कि आज तक कायम है। स्पेशल 26 में मनोज ने नीरज के साथ काम भी किया, और उसके बाद मनोज ने देवडी देखी और उन्हें वो फिल्म बहुत अच्छी लगी। लेकिन अब असमंजस में थे कि ये अनुराग को कैसे फोन करें, भाई उससे तो अब कट्टी चल रही है, दोस्ती है नहीं। तो तय किया कि अनुराग को वो फोन तो करेंगे लेकिन काम नहीं मांगेंगे, और उन्होंने अनुराग को बधाई दी। लेकिन दोस्त तो दोस्त होता है। अनुराग कश्यप ने क्या किया ये जानने के लिए एक म्यूजिकल ब्रेक पर चलिए, और उसके बाद इस किस्से को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आप सुनते रहेगा रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर दोस्तों की कहानी, समर की जुबानी। आज फ्रेंडशिप डे स्पेशल है जिसे मैं पेश कर रहा हूँ अपने फ्रेंड्स के सामने। सुनिए, मजे लीजिए।

0: बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
5: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी।
6: क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो।
7: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस।

0: समर के साथ सुनते रहिए, जानी पहचानी से कुछ अनजान धुने मस्ती गीत माला में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: मनोज वाजपेयी जी और अनुराग कश्यप में कुछ अनबन की वजह से कुछ गलत फहमियों के कारण बातचीत बंद हो गई थी। वेलकम बैक, इसी किस्से को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर, जो है साउथ ईस्ट एशिया और सिंगापुर का एकमात्र लाइव हिंदी बॉलीवुड रेडियो स्टेशन। मैं हूं समर, राम का दोस्त समर। अच्छा, इनकी जब बातचीत बंद हो गई तो एक ऐसा वक्त भी आया जब राम गोपाल वर्मा ने अपनी अगली फिल्म सत्या के लिए मनोज जी को बुक कर लिया था, जो कि मुंबई के गैंगस्टर्स को लेकर वो बनाने वाले थे, लेकिन उन्होंने फिल्म के लिए राइटर ढूंढने का जिम्मा भी मनोज जी को ही दे दिया था। तब जिस लड़के को वो लेकर आए थे वो थे अनुराग कश्यप, जो मनोज जी के ड्रामा के बहुत बड़े फैन थे। वेल, अब अपने किस्से पर लौटते हैं तो शुरुआती दौर की बात है जब इनकी दोस्ती हुआ करती थी। मनोज वाजपेयी जी ने अनुराग जी को फोन किया। इसके दो साल बाद एक रात 10:30 बजे मनोज जी के पास अनुराग कश्यप का फोन आया और अनुराग ने कहा कि एक फिल्म लिखी है, आप जब फ्री हो तो मिलने आ जाइएगा नरेशन के लिए। और मनोज जी ने अपने ईगो को साइड में रख कर उसी वक्त आधी रात को जाने का फैसला किया और अनुराग को कहा कि मैं अभी आ रहा हूँ, तुम एड्रेस भेजो और हाँ वाइन भी मंगवा लेना। और मनोज और अनुराग की इस तरह सालों के बाद मुलाकात हुई। दोनों ने वाइन का ग्लास हाथ में लिया और अनुराग ने मनोज को नरेशन सुनाया। 2 घंटे नरेशन चलने के बाद दोनों ने कहा कि अब बात करते हैं और अपने गिले शिकवे दूर किए और इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। जिस फिल्म का नरेशन अनुराग कश्यप ने मनोज वाजपेयी को सुनाया था वो थी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर। और अनुराग ने यहाँ तक कहा कि मनोज ना होते तो शायद वो ये फिल्म बनाते ही नहीं। एक फिल्म ने कैसे दोनों की दोस्ती को वापस जिंदा कर दिया और आज तक कायम है और अब मजबूत है। उम्मीद है कि ये दोस्त आगे भी ऐसी ही कमाल की फिल्में हमें देते रहेंगे। दोस्तों में लड़ाई तो चलती रहती है, पर दोस्ती की खास बात भी यही होती है कि कितना भी कुछ हो जाए आपस में आखिर दोनों मिल ही जाते हैं, है ना जी। आपका दोस्त कौन है? क्या आपकी कभी उससे लड़ाई हुई है? अरे बताइए तो सही। एक और दोस्त से जुड़ी कहानी मुझे याद आ रही है, वो है नसरुद्दीन शाह और ओमपुरी जी। करीब करीब 40 साल की दोस्ती तब टूटी जब ओमपुरी साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इनके बारे में बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, है ना, बने रहेगा मेरे साथ।

वेलकम बैक, नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत। मैं हूं समर रेडियो मसी 24/7 लाइव पर। आप सुन रहे हैं मस्ती गीत माला का एक खास एपिसोड। हम ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह की दोस्ती की बात कर रहे थे, एक ऐसी जोड़ी जो बॉलीवुड की बेहतरीन दोस्तों की जोड़ी में शामिल है। दोनों NSD में साथ रहे, साथ पढ़े और इन दोनों के बीच कभी कोई नहीं आ सका। एक दफा एक शो में अनुपम खेर साहब ने कहा था कि आप दोनों के बीच में बैठकर एक तस्वीर लेना चाहता हूं मैं, ताकि कह सकूं कि इन दो दिग्गज कलाकारों के बीच बैठा हूं। इस पर उन्होंने कहा था कि हम दोनों के बीच तुम आ भी नहीं सकते। कमाल है। दोनों की मुलाकात हुई NSD में, दोनों एकदम विपरीत स्वभाव के, एकदम उलट, और परवरिश भी दोनों की अलग अलग। नसीर साहब कॉन्वेंट से पढ़े हुए, ओमपुरी जी हिंदी मीडियम से पढ़े हुए। शुरुआत में जब ये लोग आए तो ओमपुरी जी को अंग्रेजी बिल्कुल नहीं आती थी, दोनों हाथ खड़े कर दिए थे। उन्हें लगा था कि वो टिक नहीं पाएंगे अब यहाँ NSD में, सब अंग्रेजी में बात करते हैं यहाँ तो। उन्होंने ये बात NSD के उस वक्त के डायरेक्टर अलकाजी साहब को बता दी थी। इस पर उन्होंने समझाया कि तुम हिंदी में बोलो, अंग्रेजी में क्यों बोलते, किताबें पढ़ो, अखबार पढ़ो। नसीरुद्दीन जी ने भी उनकी काफी मदद की थी। अच्छा, ओमपुरी जी एक्टिंग कोर्स में थे जबकि नसीर साहब डायरेक्शन के कोर्स में थे। एक दफा एक प्ले होने वाला था, डायरेक्शन कोर्स वाले स्टूडेंट प्ले को रीड कर रहे थे, ओमपुरी जी को कोई मौका मिल नहीं पा रहा था। इस पर वो भरी क्लास में उठकर बोले, सर आई वांट टू से समथिंग। इस पर अलकाजी साहब ही नहीं बाकी सब भी उनको देखने लगे। आगे ओमपुरी जी ने कहा कि ये सब डायरेक्शन कोर्स वाले स्टूडेंट हैं, आप इनसे पढ़वा रहे हैं, मुझे भी पढ़ना है, मैं तो एक्टिंग कोर्स से हूँ। अलकाजी साहब बोले, हाँ ठीक है, कल पढ़कर आना, फिर यहाँ भी पढ़ना। आगे क्या हुआ, इंटरेस्टिंग है ना, आगे क्या हुआ, क्या ओमपुरी साहब पढ़कर आए, कैसे उन्होंने परफॉर्म किया, क्या क्या हुआ होगा NSD की उस क्लास में, बताऊंगा मैं आपको एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। समारे मेरा नाम रेडियो मसी 24/7 लाइव पर, बने रहिए मेरे साथ।

0: Monday Blues. Not on our watch. Wake up to world news, fresh updates aur thoda Bollywood ka maza bhi. Make your Mondays matter with the morning show with Renuka, 7 a.m. onwards.
1: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore.
2: Check it out. Josh Mehra.
3: दस का बीस, दस का बीस, दस का बीस, दस का
4: अरे अरे अब बस दस से दिल कहाँ भरेगा.
5: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है.
6: टाइम टू रेज द बार.
7: मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल.
5: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: समर के साथ सुनते रहिए जानी पहचानी से कुछ अनजान धुने मस्ती गीत माला में रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर।
1: जी हम कहाँ थे? हम यहीं थे रेडियो मस्ती 24/7 लाइव की इस महफिल में, नाम है जिसका मस्ती गीत माला और मैं हूँ समर। एक किस्सा था बड़ा इंटरेस्टिंग जिसे मैं आपको सुना रहा था, नसीर साहब और ओमपुरी साहब की दोस्ती की कहानी है ना जी। तो हुआ ये कि ओमपुरी जी ने भरी क्लास में कह दिया कि वो पढ़ना चाहते हैं सबके सामने प्ले को। अगले दिन जब वो तैयारी करके आए पहुंचे तो बड़ा कमाल का उन्होंने पढ़ा, सब हैरत में रह गए। उनके दोस्त नसीरुद्दीन साहब साथ में बैठे, बोले आई न्यू यू वुड स्पीक। अंग्रेजी का प्ले था और उन्होंने कमाल का पढ़ा। तो इस तरह से नसीरुद्दीन शाह और ओमपुरी साहब ने हमेशा एक दूसरे की मदद की, यही रिश्ता था दोनों का। अच्छा ये भी माना जाता है कि प्यार दोस्ती है, यानी कि प्यार का पहला कदम दोस्ती है, और इस सुपर हिट फॉर्मूले का बॉलीवुड में खूब इस्तेमाल भी हुआ है। दोस्ती की जोड़ियों पर कहे गए डायलॉग्स जो हिंदी फिल्मों में यूज किए गए आज भी लोगों के जहन में जिंदा है ना। आप कौन सा बोलते हैं या कौन सा फेवरेट है आपका दोस्तों के बीच? दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू, है ना जी। कहा होगा आपने अपनी गर्लफ्रेंड से दोस्ती के वक्त? अच्छा ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? 1989 में आई सूरज बढ़ जाता है की फिल्म मैंने प्यार किया से डायलॉग था जो बहुत फेमस हुआ था। इसी फिल्म का एक और डायलॉग है जो भाग्यश्री ने सलमान से कहा था, दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। शानदार। अच्छा 1994 में आई फिल्म राजकुमार संतोषी की अंदाज अपना अपना का एक डायलॉग है, दो दोस्त एक कप में चाय पियेंगे इससे दोस्ती बढ़ती है। तो आज भी लोग अपने दोस्तों को मार देते हैं, प्यार दोस्ती है, अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं है। सिंपल, प्यार दोस्ती है, लव इज फ्रेंडशिप। ये क्लासिक डायलॉग शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्मों में से एक कुछ कुछ होता है का है। पूरी फिल्म प्यार और दोस्ती के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन दोस्त को एक खास जगह दी गई है। दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। फिल्म थी थ्री इडियट्स और ये डायलॉग दरअसल लाइफ का एक फैक्ट है। अब मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड में कौन कौन सी फिल्में बनी हैं जो दोस्ती पर हैं, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक, ठीक है? स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। आज की आखिरी मुलाकात होगी बस इन गानों के बाद।

0: shows don't just play, they stay with you. And when our listeners ask for more, we bring them back. Encore shows by popular demand. Relive the music, the moments, the magic. Only on Radio Masti 24/7. Check the app menu for Encore show timings.
1: Radio Masti 24/7 Live, a part of Masti Media Network Singapore.
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूं अंतरा आपके साथ।
3: मैं आरजे अनुपर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
4: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
5: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। द आरजे अकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.

0: रेडियो मस्ती पर आप समर के साथ सुन रहे हैं मस्ती गीत माला।
1: सामने ये कौन आया,
2: सुस्वागत करता हूँ, वेलकम बैक। मैं हूँ समर, रेडियो मस्ती 24/7 पर आप सुन रहे हैं मस्ती गीत माला का एक खास एपिसोड। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में दोस्ती टॉपिक को बहुत तवज्जो दी गई है। दोस्ती पर आधारित कई फिल्म्स हैं, जिनमें से एक तो 1964 में आई थी, नाम था उसका दोस्ती, जिसका जिक्र मैंने आज सबसे पहले भी किया था शो की शुरुआत में। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में रामू और मोहन की दोस्ती की कहानी है। दोनों ही डिसेबल्ड हैं, लेकिन दोस्त मिलने के बाद अपनी काबिलियत को वो जानते हैं और साथ मिलकर गाने गाकर अपना गुजारा करते हैं। फिर आनंद फिल्म को कौन भूल सकता है, जिसमें एक दोस्त मरते हुए अपने दोस्त को जिंदगी जीना सिखा जाता है। अमित जी और काका ने इसमें अभिनय किया था, और ये बात अलग है कि वो दोनों ही एक दूसरे के राइवल्स थे। और हाँ, शोले को कैसे भूल सकते हैं, जिसने दोस्ती को नया नाम दे दिया। जब भी दो गहरे दोस्त होते हैं, लोग उनको कहते हैं भाई क्या जय वीरू की जोड़ी है ना। फिल्म याराना, जिसके दोनों कलाकार रियल जिंदगी में भी दोस्त थे, अमित जी और अमजद खान साहब। और कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना, अमर और प्रेम की दोस्ती और चुलबुलेपन के लोग आज भी दीवाने हैं। साल 1999 में आई थी रॉकफोर्ड। हालांकि इस फिल्म को बहुत ही कम लोगों ने देखा होगा, लेकिन इस फिल्म में एक टीचर और स्टूडेंट की दोस्ती दिखाई गई है, और ये समझाया गया है कि दोस्ती उम्र की मोहताज नहीं होती। मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मुझे याद है। फिल्म दिल चाहता है, साल 2001 में आई थी ये फिल्म। आमिर सैफ और अक्षय खन्ना स्टारर। इस फिल्म में दोस्ती के अलग अलग पहलुओं को पेश किया गया था। मुन्ना भाई MBBS में मुन्ना और सर्किट की दोस्ती आज भी लोगों की जुबान पर है। रंग दे बसंती फिल्म भी दोस्ती पर बनी फिल्मों में से एक बहुत ही अहम फिल्म है। फिल्म में थोड़ा सा देश प्रेम का तड़का भी लगा दिया गया है। और मेरी खुद की फेवरेट, जिसकी CD मैंने लोगों को बांटी, वो है रॉक ऑन। साल 2008 में आई थी ये फिल्म। चार दोस्तों की इस कहानी में दोस्ती, प्यार, तकरार सब है। 3 Idiots को कैसे भुलाया जा सकता है भला। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा भी दोस्तों की लाइफ पर बनी फिल्म है। और एक और फिल्म का जिक्र मैं करूंगा, और वो है 2018 में रिलीज हुई वीरे दी वेडिंग। लड़कियों की दोस्ती पर बनी फिल्म है ये। ये एक अलग टाइप की फिल्म है, एक अलग टाइप की बॉन्डिंग इसमें दिखाई गई है। और मुझे तो जवानी दीवानी भी बहुत पसंद है, कमाल की दोस्ती है उसमें। देखिए, फ्रेंडशिप भी तो एक बॉन्ड ही है। ये बॉन्ड आपके और मेरे बीच में भी बना रहे, इसलिए प्रॉमिस कीजिए मुझे अपनी दोस्ती का इजहार करेंगे आप, लिखेंगे मुझे, मैं इंतजार करूंगा। फिलहाल कुछ और प्रॉमिस भी कीजिएगा, आप वादा कीजिए कि आप रखेंगे अपना ख्याल, अपने अपनों का ख्याल, अपने आसपास के लोगों और चीजों का ख्याल। किसी के दिल में मोहब्बत बनकर बस जाएंगे, किसी के चेहरे पर मुस्कान बनकर सज जाएंगे, और कुछ ऐसा कर जाएंगे कि लोग आपको याद रखें, याद मुझे भी रखेगा। अपनी दुआ में मेरा नाम है समर, आपसे मिलूंगा यहीं पर। तब तक के लिए बाय, नमस्कार, टेक केयर, आई लव यू ऑल।

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

तकदीर से पहले।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
3: ये रात तो अपनी है, पर एक ख्याल किसका है? ये रात हमें इतना प्यार क्यों करती है?
4: मुझे चांद पे ले चलो,
3: सबको सुलाकर हमसे अकेले में बात करती है। बनके रात के हम सफर, हर रोज 11 बजे, ट्यून इन टू
5: रात।

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट

0: नाचने का मन है?
1: मेरा भी। आपके रिक्वेस्ट ही बनाएंगे शो को फुल ऑन पार्टी। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 3 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: Only on Radio Musti 24/7 Live, a part of Musti Media Network Singapore. Check it out.
3: नए दिन की शुरुआत शांति और श्रद्धा के साथ, भक्ति प्रेरणा और सुकून भरे गीत सुनिए रेडियो मस्ती 24/7 पर। मस्ती पे भक्ति सुबह 6 बजे।
4: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
5: ना करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है। टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल। Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters. Josh Mehra. Your Musty Music Cafe is open. Freshly brewed beats

0: आरजे गया एग्जिट पर
1: और गाने आ गए ट्यूटर पर।
0: Non-stop music, non-stop musty, only on Musty Music Cafe.
2: Radio Musty 24/7 Live, a part of Musty Media Network Singapore.

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
2: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
3: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
1: शुरुआत हो थोड़ी सी न्यूज के साथ, थोड़ी सी गॉसिप के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। क्योंकि जब ट्यूसडे आता है ना, तो आती है आरजे अंतरा की बातों की बारिश। योर डेली स्कूप ऑफ व्हाट्स हॉट, व्हाट्स वायरल एंड व्हाट्स वर्थ नोइंग, सर्व्ड फ्रेश विद ग्रेट म्यूजिक एंड माय अनबीटेबल चार्म, यू सी। Tune in to me on Masti Ka Mantra with RJ Antara. Har Tuesday, 7 PM, Radio Masti.

0: हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक

0: की याद सताए जनाब, अकेलापन रात का तो हम है ना।
1: रात अकेली है।
0: रोज रात रेडियो मस्ती पर 11 बजे से।
2: कभी मेरे साथ कोई रात गुजार। जोश में रहो।
3: मेरे करण अर्जुन आएंगे
4: ना? करण अर्जुन आएंगे ना ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।
5: आजा प्यार की होड़ी ले।
6: दिल बोले तो
7: हार्ट हार्ट।
8: हवा यार सौदा सौदा।
6: ओहो
5: दोनों डील कर सी
6: टाइट, टाइट वेरी टाइट।

0: बिना फ्लाइट टिकट खरीदे दुनिया का चक्कर लगवाएगा कौन? पेपराजी से भी तेज गॉसिप्स आपको लाकर देगा कौन? क्या बात है, आप तो काफी स्मार्ट निकले। तो सुनिए, सालों से एक टक सिंगापुर तक आपको अपडेट रखने वाली आपकी आरजे नुपुर को मस्ती मॉर्निंग्स पर ट्यूसडे, वेंसडे एंड थर्सडे को ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव। ये है मस्ती मॉर्निंग्स मेरी जान।
1: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती ऐप नाउ।
2: योर मस्ती म्यूजिक कैफे इज ओपन। फ्रेशली ब्रूड बीट्स

0: आरजे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।

0: अर्जुन आएंगे?
1: न करण अर्जुन आएंगे, न ही आरजेएस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे मस्ती म्यूजिक कैफे कैफे कैफे कैफे।
2: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सब की जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द आरजे एकेडमी एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
3: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
4: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
5: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
4: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
5: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: छोटी छोटी बातें छोड़ो और बड़े बड़े हिट सुनो। आपके रिक्वेस्ट सी बनाएंगे शो का ब्लॉकबस्टर प्लेलिस्ट। रोमांटिक, फिल्मी, पार्टी वाइब्स, सब मिलेगा यही के यही। व्हाट्सएप करिए हमारे ऐप के थ्रू या फिर डायरेक्ट सिंगापुर नंबर 9151896 पर। मस्ती वॉइस आपकी चॉइस।
2: ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव, अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर।
3: चेक इट आउट।
4: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
5: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़।
6: दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। जोश में रहो।
7: मेरे करण अर्जुन आएंगे?
8: न करण अर्जुन आएंगे, ना ही आरजेस आएंगे, पर हाँ तो सिर्फ सुपर हिट बैक टू बैक गाने आएंगे। मस्ती म्यूजिक कैफे।

Dum-ta-dum-ta-ta-dum-ta.

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंग आउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंग आउट।
2: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो। हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो।

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: बस हो गया, ऑफिशियली फ्राइडे इवनिंग शुरू हो गई। और मुझे पूरा यकीन है इस वक्त सिंगापुर में दो तरह के लोग होंगे, एक जो ऑफिस से निकल चुके हैं एंड दूसरे जो लैपटॉप बंद तो कर चुके हैं पर दिमाग कहीं ना कहीं किसी न किसी एक्सेल के ब्लॉक में अटका हुआ है। हेलो सिंगापुर, हेलो नमस्कार, मैं हूँ मुग्धा आपके साथ और आप सुन रहे मस्ती हैंगआउट 2.0। अ वेरी गुड इवनिंग, ये है मेरा वो शो जहाँ पे हम दिल खोल के ऐसी बातें करते हैं जिसमें आपको दिमाग ना लगाना पड़े, बस दिल लगा लो, बात इतनी सी है। वैसे फ्राइडे का ना एक अलग ही मैजिक होता है, सिटी वही रहती है, सड़कें वही रहती है, MRT वही रहती है, कॉलेज भी वही होता है, बस आपका मूड चेंज हो जाता है ना, और जब मूड चेंज होता है तो नजारा बदला बदला सा लगता है। That's why मस्ती 2.0 में जैसे कि आप जानते हैं आज एक ऐसी फिल्म और गाने हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको ये बताते हैं कि लैंग्वेज कोई भी हो, बदलते हुए नजरिए की कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे फ्राइडे की तरह पूरा हफ्ता एक ही रिदम में निकलता है एंड फ्राइडे की शाम आते आते बदला नजारा यू यू यू सारा का सारा न्यू न्यू न्यू या यू गेस इट राइट। अगले तीन घंटे फ्राइडे फीलिंग को हम इंग्लिश विंग्लिश के नजरिए से देखेंगे, पर फिलहाल आज का शो शुरू करेंगे विद दिस टाइटल ट्रैक ऑफ इंग्लिश।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

सेम एंड देन कम्स द फ्राइडे. फ्राइडे की शाम आती ही दिमाग कहता है चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, नया कैफे, नई प्लेस, नया रेस्टोरेंट या फिर हमारी किसी एक नई फिल्म का एक नया लुक. बॉलीवुड में काफी कुछ नया आजकल देखने को मिल रहा है, पर फिलहाल जिस चीज की बात करने वाली दैट्स करीना कपूर खान और पृथ्वीराज कुमार की अपकमिंग मिस्ट्री दायरा का पहला पोस्टर. एक पोस्टर ने इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया है कि फैंस अभी से कहानी प्रेडिक्ट भी कर रहे हैं और इंतजार भी. वैसे काफी इंटेंस लुक है करीना कपूर का, शी इज वेरी फोटोजेनिक. आई मस्ट से वो बस ऐसे देख लेती है और अपने आप अच्छी फोटो आ जाती है. सो इस फोटोग्राफ को देखकर लग रहा है अगेन अ वेरी इंटेंस थ्रिलर मूवी इज गोइंग टू कम बॉलीवुड की तरफ से. इट्स अ सिनेमा हॉल रिलीज, तो ये ओटीटी पर नहीं थिएटर्स में रिलीज होगी. एंड शायद इसीलिए मुझे इंग्लिश विंग्लिश का ये जो गाना है बदला नजारा यूं उसका ये जो गाना उसकी लाइन लर्निंग वर्निंग सीखू वीखू नई जुबा, ये मुझे बहुत पसंद है. कभी लैंग्वेज नहीं होती है, कभी एक्सपीरियंस नहीं आता. एंड फ्राइडे तो हर हफ्ते बोलता है कि आज कुछ नया ट्राई कर लो यार, मैं हर हफ्ते आता हूँ तो मुझे नए नए अंदाज में ट्राई करो, है कि नहीं.

0: एंड दैट इज द फ्राइडे वाइट ट्रैक. फिलहाल ये ट्रैक आपके लिए, आप सुन रहे हैं मुग्धा को. आई विल बी राइट बैक.
1: You're tuned into Radio Masti 24/7 live, keeping you connected anywhere, anytime, the Desi way.

0: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
1: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं। द RJ Academy एट मस्ती मीडिया नेटवर्क इज नाउ ओपन फॉर यू। That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
2: Namaste, behnor bhaiyo. Main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: फ्राइडे की जो शाम है ना, उसमें हर एक चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पर एक चीज है जो होती है और वो है हम सब बाहर निकलते हैं नई जगहों पे, नए इवेंट्स, नए प्लान्स होते हैं, और कभी कभी ना सिर्फ देखकर ही ये मान लेते हैं कि वाओ दिस इज लाइक अमेजिंग, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल है। लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है। आपको पता है इटली से एक बहुत इंटरेस्टिंग केस सामने आया, एक आदमी ने ना फेक रोमन एम्फीथिएटर बना दिया। फेक रोमन एम्फीथिएटर, कैन यू बिलीव इट? लोगों को सालों तक यकीन रहा कि यही है असली एम्फीथिएटर, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, दिस इज इट, और लोग पैसे देकर उसको देखने जा रहे थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई और पता लगा कि भाई साहब पूरी जो साइट है वो तो मटेरियल से बनाई गई है, नए मतलब वो फेक है। और पता है इंग्लिश विंग्लिश की सबसे अच्छी बात क्या है, फिल्म यही कहती है कि सिर्फ बाहर से देखकर किसी को जज मत करो, कभी लैंग्वेज देखी, कभी अपीयरेंस देख करके, हमेशा अंदर की किताब को पढ़ने की कोशिश करो। कभी किसी फैंसी बोर्ड को देखकर ये मत सोचना कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही कमाल की जगह है ना। एंड दिस इज व्हाई आई लाइक दिस।

0: हुआ झुमका।
1: राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं।
2: अगर हम सबकी जानी पहचानी गोल्डन वॉइस के मालिक दी अमीन सयानी जी का ये कहना है, तो सोचिए आप भी अपनी आवाज को सबके दिलों तक कैसे ले जा सकते हैं।
3: द RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours of training per level. Flexible individual focused syllabus offered for 14 years and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for application form.
4: Namaste behno aur bhaiyo, main aapka dost Amin Sayani bol raha hoon.
5: Natural night. Do you feel alright? Want a natural night?

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: Have you ever noticed Monday से Thursday तक हम बस भागते रहते but deadlines and meetings and targets और Friday के शाम आते अब थोड़ा सा जेल जरा ऐसे वाली फीलिंग आती है। वैसे म्यूजिक की दुनिया से भी बहुत इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। ग्लोबल म्यूजिक सेंसेशंस दैट इज BTS उन्होंने डिसाइड किया है कि इस साल अपना म्यूजिक ग्रैमी अवार्ड्स के लिए सबमिट नहीं करेंगे। वाव। सो बेसिकली ग्रुप का कहना है कि म्यूजिक को रीजन या लैंग्वेज के हिसाब से नहीं यूनिवर्सल नजरिए से देखा जाना चाहिए। और मुझे इसमें हमारे फ्राइडे की खुशबू आ रही है। हर बार रेस जीतना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी अपने टर्म्स पे चलना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एंड दैट्स वेयर दिस मूवी फॉल्स राइट ऑन द प्लेस। इंग्लिश विंग्लिश की तरह शशि किसी को प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रही थी और निकली भी नहीं थी, वो खुद के लिए निकली थी। और शायद फ्राइडे भी हमें हर हफ्ते ये याद दिलाने की कोशिश करता है, पूरा हफ्ता दुनिया के हिसाब से काम करो बट देन लड्डू बनाओ पर अपनी तरह और अपनी पसंद से और अपने लिए अपनी खुशी के लिए, दुनिया को खिलाने के लिए नहीं। शशि वॉज एन एक्सपर्ट इन मेकिंग लड्डू बट देन नोबडी केयर्ड अबाउट।

0: सिंगापुर बोर हो गए हो क्या? अब टेंशन और बोर्डम होने वाला है फुल ऑन डिसअपीयर,
1: क्योंकि आ रहा है मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा। गॉसिप का ओवरलोड, एंटरटेनमेंट का धमाका और दुनिया भर की खबरों का तड़का।
0: सीधी न्यूज तो सब देते हैं, ये शो देता है टेढ़ी न्यूज विद सार्कैज़म की टॉपिंग और मस्ती की क्रीम। गारंटीड मूड होगा हाई, इमेजिनेशन होगी फ्लाई और आप हंसोगे बिन वाईफाई।
1: तो सिंगापुर गेट रेडी फॉर योर डेली लाफ्टर डोज। मस्ती हैंगआउट विद आरजे मुग्धा ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: फॉर शो टाइमिंग्स चेक आउट द रेडियो मस्ती 24/7 लाइव ऐप। आरजे मुग्धा के साथ गॉसिप भी, मस्ती भी, सार्कैज़म भी, सब कुछ सिर्फ मस्ती हैंगआउट।

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: वेलकम बैक सिंगापुर, आप सुन रहे हैं मस्ती हैंगआउट 2.0। इस आर का हम सफर है हमारा अपना प्यारा इंग्लिश विंग्लिश एंड वी हैव टेकन द मूवी एंड द सॉन्ग्स। और ये जो आर है इस पर तो हम मूवी के बारे में बात करेंगे, नॉट एग्जैक्टली द मूवी। अब चलो बात आगे बढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक बात बताइए, बचपन में हम कितने क्यूरियस किस्म के लोग होते थे ना, और ये बचपन में होते थे, हर ड्रॉअर को खोलना है, हर बटन को दबाना है, हर नई चीज देखनी है। और फिर बड़े होते होते हम सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, व्हाट्स द डेडलाइन। सीरियसली यार, पर आज एक ऐसा वीडियो मेरे सामने आया जिसने मेरा पूरा बचपन याद दिला दिया। आपको पता है एक जू है लुइसविल का, और वहां पे एक ओरैंगुटान, आई थिंक ये वीडियो बहुत ज्यादा नया नहीं है, इट्स लाइक ओल्ड पर अब वायरल हो रहा है। वहां के एक जू में ओरैंगुटान एम्बर है एंड शी इज लाइक वायरल ऑन सोशल मीडिया मैन। एक विजिटर ना अपना पर्स दिखा रही थी और एम्बर इतनी क्यूरियोसिटी के साथ उसके बैग की हर एक चीज देख रही थी जैसे उसको सब कुछ जानना है। एंड यू नो व्हाट वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट? यस, कैंडीज। कैंडी में उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था। और फिर उसके उसकी बेटी थी, उसने उसकी बेटी का पर्स भी खुलवाया और उसमें भी देखना था कि उसको क्या क्या रखा है। बाय गॉड, हमारे मोहल्ले की पंचायती वाली आंटी, भाभी जी क्या लेके आई, हमको भी तो दिखाइए। अरे भाई बहुत होता है वहां पर, है ना। सच कहूं क्यूरियोसिटी की कोई एज नहीं होती है, शायद इसीलिए मुझे ये मूवी बहुत पसंद है। एंड दिस इज जस्ट स्पेशल इन इट्स वे। शशि जो है वो इंग्लिश इसलिए नहीं सीख रही है क्योंकि उसको दुनिया ने कहा है या उसको दुनिया ने दिखाना है। उसने इंग्लिश इसलिए सीखी क्योंकि उसने खुद अपने आप से कहा, चलो देखते हैं, ट्राई तो कर सकते हैं और कुछ बुरा नहीं होगा, सीखकर अच्छा ही होगा। एंड फ्राइडे यही तो कहता है, रूटीन से बाहर निकलो, कुछ नया देखो। अगर शशि अकेले जाकर के इंग्लिश सीख सकती है अनजाने शहर में, भाई साहब आप तो सिंगापुर में रह रहे हो एंड सब कुछ कितना ईजी है यहाँ पर, है ना। कुछ नया देखो, कुछ नया सीखो, थोड़ा क्यूरियस हो जाओ लाइफ में। फिलहाल जाना नहीं चाहेंगे अगला गाना कौन सा है?
2: नौराई माची लाड़ा ची लाड़ा ची गा, आ पड़ हिला चंद्रा ची गा।
1: आओ सुनते हैं।

0: 10 का 20 10 का 20 10 का 20 10 का 20।
1: अरे अरे अब बस 10 से दिल कहाँ भरेगा।
2: मस्ती टॉप 20 लेकर रेणुका जो आने वाली है।
3: टाइम टू रेज द बार। रम्मा मस्ती टॉप 20 बॉलीवुड चार्ट बस्टर्स ऑफ द वीक फुल ऑन रेणुका स्टाइल।
2: Now, pumping up your Thursday evenings, 5 p.m. onwards, catch the OG rockstar Renuka with the week's top chart busters.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय वेलकम बैक सिंगापुर, मस्ती हैंगआउट 2.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यू नो हमारे साथ आज कौन है स्टूडियो में? इट्स ऑल अबाउट इंग्लिश विंग्लिश। वैसे फ्राइडे इवनिंग का अपना एक अलग ही सीन होता है ना, ऑफिस का आईडी कार्ड पॉकेट में चला जाता है, कहीं पे खो जाता है, नजर नहीं आता, भूल जाते हैं हम, और असली वर्जन हमारा बाहर आ जाता है। कोई स्नीकर्स पहन लेता है, कोई फैमिली डिनर प्लान कर रहा होता है, कोई सीधा मूवी अपडेट चेक करने लग जाता है कि वेर। वैसे बॉलीवुड से एक बहुत बड़ा अपडेट आया, हालांकि अपडेट तो एक दिन पहले आ चुका था, मेरी आपसे मुलाकात आ चुकी है तो बात आपको आज बताऊंगी। नितेश तिवारी की रामायण का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। सोशल मीडिया पर फैंस आर टॉकिंग ओनली अबाउट रामायण। रणबीर कपूर, साई पल्लवी, यश रणबीर कपूर, लारा दत्ता, साई पल्लवी, यश रणबीर कपूर, साई पल्लवी, लारा दत्ता से रामायण एंड द मिसिंग पीस हनुमान जी, वो नहीं दिखे कहीं ट्रेलर में। खैर, एक्साइटमेंट बहुत हाई है, सब अपने अपनी फेवरेट मोमेंट्स जो है वो ढूंढ रहे हैं विद द कैरेक्टर्स। मुझे इसमें एक बात बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, टेक्नोलॉजी बदल जाती है, प्रेजेंटेशंस बदल जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां और रूट्स कभी पुराने नहीं होते। जस्ट लाइक हमारे आज के हमारी गेस्ट इंग्लिश विंग्लिश की तरह, शशि नई चीजें सीखती है, नए लोगों से मिलती है, नई भाषाएं सीखती है अलॉन्ग विद इंग्लिश, लेकिन वो कभी अपनी पहचान नहीं बदलती। शी नेवर ट्राइज टू चेंज हर अटायर, यू कैन ऑलवेज सी शशि इन अ साड़ी। वाई? शी डिडंट फाइंड एनी टाइम की साड़ी बोरिंग है यार, कुछ और पहन लेते हैं। नहीं, शी वॉज ऑलवेज इन अ साड़ी। वाई? बिकॉज शी ऑलवेज रिस्पेक्टेड द रूट्स। तो कुछ कहानियां कभी नहीं बदलती, कुछ लोग आगे बढ़ते हैं पर अपने पास्ट को अपने साथ लेकर चलते हैं, बिकॉज दे वर स्पेशल, दे आर स्पेशल एंड इट विल बी स्पेशल। खुद को भूल जाना इस अलग बात है, नई चीजें सीखना अपनी पुरानी चीजों को लेकर के आगे, दैट इज सिंपल।

थकन चारों ओर है, चलते जाओ, पहुंचता कौन है, चलते बहुत हैं। नई दुनिया के सुंदर बन के अंदर पुराने वक्त के पौधे बहुत हैं, और उन्हीं पुराने वक्त के पौधों की कहानी सुनाएगा समर, जो आज हमारी राहों में छायादार घने पेड़ बनकर खड़े हैं, जिनके होने से सफर की कड़ी धूप भी छांव सी लगती है। लेजेंड्स अचीवर सीरीज में सुनिए मेरे यानी समर के साथ कुछ महान शख्सियतों की जिंदगी की दास्तान, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर। जोश में रहो,

0: We are Radio Masti 24/7 live, keeping you connected Bollywood style anywhere, anytime.
1: फ्राइडे इवनिंग हो या सिंगापुर का एनडीपी सीजन यानी कि नेशनल डे सीजन, मूड में थोड़ा स्पार्कल ना हो ऐसा कैसे पॉसिबल है? एंड फ्राइडे नीड्स टू बी वेरी स्पार्कलिंग. तो हमारा वैसे भी आज का मूड क्या है? इंग्लिश विंग्लिश. और ये जो आर है, इस आर में हमने गाना कौन सा सिलेक्ट किया है? न्यू. तो इसी सेलिब्रेशन को हम क्यों ना न्यू से सजा दें. समथिंग वेरी न्यू एंड ब्रिलियंट इज हियर और इसका बीड़ा उठाया है एक बार फिर से जोया लुकास ने, बिकॉज वो लेकर आया है अपना एनडीपी स्पेशल, दैट इज नेशनल डे स्पेशल, वन नेशन इन फाइनाइट ब्रिलियंस. तो क्या है ना कि सिंगापुर के हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करेंगे हम डायमंड्स की उस चमक के साथ जो बिल्कुल हमारे शहर की तरह ब्राइट है. टिंग टिंग, एक स्पेशल ऑफर है, इसमें डायमंड ज्वेलरी परचेज पे पूरा 9% का जीएसटी अब्सॉर्ब किया जा रहा है. पहले तो मुझे ये न्यूज अब्सॉर्ब कर लेने दो. और अगर आप गोल्ड ज्वेलरी की शॉपिंग प्लान कर रहे हैं तो गोल्ड ज्वेलरी मेकिंग चार्जेस पे फ्लैट 30% ऑफ भी आपको मिलेगा. और बात सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, जोया लुकास स्टोर्स पर आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल इन स्टोर ऑफर्स भी हैं, समझे? एंड दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू. कोई और वेट करता है आपका? नहीं ना, दे आर वेटिंग फॉर यू, समझे? अब ये ऑफर कब तक वैलिड है जान लो. इट्स वैलिड टिल 10th ऑगस्ट 2026 तक. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग नीड्स टू बी हर्ड अलाउड एंड दैट इज टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई. और अब मूड को रखते हैं बिल्कुल हैप्पी. न्यू मस्ती हैंगआउट 2.0 कंटिन्यूज विद दिस ट्रैक.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय एवरीबॉडी, फ्राइडे का एक परमानेंट सीन होता है। शाम होते ही ना घर के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेजेस आने लग जाते हैं। व्हाट्स द प्लान, डिनर पे कहाँ चलना है, व्हाट्स द प्लान, कहाँ जा रहे हो, व्हाट्स द प्लान, क्या प्लान किया। माय गॉड, जो पूरी फैमिली जस्ट सारे फ्रेंड्स है ना, उनके साथ टेबल शेयर करनी हो, वेयर टू गो। तो इस NDP, दैट्स नेशनल डे सीजन, एक रॉयल प्लान रेडी हो रखा है। वी आर हियर विद अगेन हमारे पर्सनल फेवरेट शाही महारानी, बिकॉज वो लेकर आए हैं सिंगापुर के 61st बर्थडे को और स्पेशल बनाने का एक बहुत ही स्पेशल तरीका। चूंकि सिंगापुर अपना 61 जो है ईयर मना रहा है, उसमें स्टेप इन कर रहा है, तो हम इसको बहुत ही अलग तरीके से मनाने वाले दिस ओकेजन। इट्स गोना बी अ वेरी फैंटास्टिक फीट। बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए आपके पास ये ऑप्शन होने वाला है। पॉपुलर वीकडे बुफे जो है शाही महारानी का, जस्ट एट ₹61 प्लस फॉर टू। अ वेरी स्पेशल NDP ऑफर जो है वो क्रिएट किया गया है टू थैंक आवर गेस्ट्स उनके कंटिन्यूड सपोर्ट के लिए। अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज, अपने कॉलीग्स के साथ आइए और ये जो ऑथेंटिक नॉर्थ इंडियन बुफे है ना, उसको आप एंजॉय करिए। डेजर्ट्स हैं, बेक्ड नान है, दैट्स फ्रेश, स्मोकी तंदूरी फेवरेट्स हैं आपके, आई मीन व्हाट्स नॉट। आपको पता है शाही महारानी जब कुछ रॉयल लेकर आता है तो उसमें एवरीथिंग फॉर एवरीबॉडी होता है। मंडे टू फ्राइडे का वीकडे बुफे है, दैट्स 3rd to 31st August, जो कि शुरू हो चुका है ऑलरेडी 12 PM to 2:30 PM, है ना। ज्यादा जानकारी के लिए आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट जो है इनकी, दैट इज www.shahimaharani.com, या फिर आप रिजर्वेशन के लिए कॉल कर सकते हैं 6235-8840 पर। तो बेसिकली शाही महारानी दो अमेजिंग ऑफर्स लेकर आया है। इट्स पहला जो है वीक डे बुफे है, एंड अनदर वन इज अ वेरी अमेजिंग नेशनल डे लंच बुफे।
2: मटर गश्ती खुली सड़क में, तगड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में।
1: आप इनकी वेबसाइट पे जाएं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड डोंट मिस द चांस टू गो एंड एंजॉय दिस अमेजिंग यम्मी डिलीशियस बुफे, क्योंकि ये शाही महारानी का है।

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours

0: Training per level, flexible, individual focus syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
1: Good morning.
2: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, वेलकम बैक। फ्राइडे की शाम का एक साइड इफेक्ट तो बहुत ही पक्का है। ऑफिस वाले फॉर्मल लुक से सीधा अपनी वीकेंड वर्जन में आ जाते हैं और उनको पहचानना कितना मुश्किल हो जाता है। ओ माय गॉड, आई मीन ये तुम ही हो, ऐसे वाला एक्सप्रेशन है ना। वैसे फॉर्मल जो ऑफिस का लुक है उससे कुछ अलग और कहां हो रहा है। बॉलीवुड हॉलीवुड सब जगह कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है। डकोटा जॉनसन का पहला लुक आया है जहां पे वो मर्लिन के रोल में है और बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहे। आई मीन आफ्टर 50 शेड्स ऑफ ग्रे कौन कह सकता है कि शी इज डकोटा। मर्लिन का अटायर लेना, मर्लिन के अवतार में आना, इट्स नॉट इजी। सो बेसिकली इट्स डकोटा 2.0 बिल्कुल हमारी तरह। वैसे इंग्लिश की शशि भी देखा जाए तो ऐसी है, कपड़े वही है, मुस्कान वही है, बस कॉन्फिडेंस इतना अलग हो जाता है, इतना ग्लो करता है कि कोई नहीं पहचान पाता। दिस इज द सेम शशि। माय गॉड, वही शशि जो लड्डू बनाती है, जिसकी पहचान सिर्फ लड्डू बनाने से थी। व्हाट इज शी डूइंग? वो तो अंग्रेजी में बातें कर रही है, वो तो लोगों से मिल रही है। कॉन्फिडेंस लेवल देखो भाई साहब, शी इज ट्रैवलिंग अलोन। दैट इज द स्पिरिट ऑफ फ्राइडे यार। जी आप समझे। वापस आइए, उसके बाद हम चलेंगे शो के थर्ड आवर में। देखते हैं वहां पे मेरे पास कौन सा गाना इंतजार कर रहा है।
3: परदेसियां है तेरे प्यार में जब से झनकार सी है।
1: Stay tuned and stay connected.

0: हैंगआउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंगआउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: हाय, वेलकम बैक शो की दोहरा द लास्ट आवर में फ्राइडे वाइब के साथ मैच करने के लिए मैं जो गाना लेकर आई हूँ आपके लिए फ्रॉम द मूवी इंग्लिश इंग्लिश दैट इज मैनहट्टन। फ्राइडे की रात मेमोरीज दोनों का बहुत ही अमेजिंग कॉम्बो होता है, अभी किसी कैफे से, कभी किसी रोड ट्रिप से एंड कभी एक गाने से। प्रियंका चोपड़ा ने रिसेंटली बहुत ही क्यूट वीडियो शेयर किया अपनी बेटी मालती का, जो कि गाने टीवी पर एक गाना बज रहा था, उस पर डांस कर रही थी एंड द गाना वाज तूने मारी एंट्री, उसको देख रही थी एंड शी वाज लाइक टमक टमक। हु वुड हैव थॉट, प्रियंका ने एक कमेंट किया साथ में उसकी एक फोटो के। एंड सच में कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, दे बिकम मेमोरीज जस्ट लाइक मैनहट्टन। एक शहर सिर्फ बिल्डिंग से नहीं बनता है, यादों से याद रहता है जो आप वहां बनाकर अपने साथ ले आते हो या फिर वहां पे रह के बनाते हो। पहले शशि डरती थी, बाहर नहीं निकलती थी, she was scared of all these skyscrapers, but then slowly and steadily she started enjoying उन skyscrapers को देखना, उनके बीच में घूमना फिरना, सपने बिल्कुल उनकी तरह ऊंचे थे लाइक मैनहट्टन, है ना। शशि का मैनहट्टन, शशि के बाहर वाला मैनहट्टन 2.2, है ना। यादों से जुड़ के रहिए। चलिए फ्राइडे नाइट को हम और ज्यादा मेमोरेबल बनाते हैं विद दिस ट्रैक मैनहट्टन फ्रॉम इंग्लिश इंग्लिश।
2: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
3: शशि वो मैनहट्टन है।
2: मैनहट्टन
4: मैन आज में हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
3: टैन मतलब वो धूप की छाप।

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वीर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: Hi, it's Friday and we are vibing with Friday. और आप सोचते होंगे मुग्धा तुम थकती नहीं हो? नहीं, मुग्धा कभी नहीं थकती है। वीकेंड आते ही ना दिमाग में नए नए आइडियाज आने लग जाते, बिकॉज बींग एन आरजे इज नॉट जस्ट अबाउट यहाँ बैठ के बातें करना। एंड यू नो वॉट, आज के दौर में इट्स नॉट अबाउट जस्ट अबाउट बींग एन आरजे, क्योंकि हम जो आपको देने सिखाने का मौका दे रहे हैं और आपको सीखने का मौका दे रहे हैं, वो जल्दी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। मस्ती मीडिया नेटवर्क आपके लिए इतना कुछ लेकर आ रहा है जो आपको नए नए अवतार्स में बदल सकता है। यू कैन बी अ शशि ऑफ योर ओन लाइफ, सच में। मतलब अगर आप रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं, बिल्कुल बनिए, लेकिन उसके अलावा यू हैव सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन बी। आप पॉडकास्ट होस्ट बन सकते हो, आप प्रेजेंटर बन सकते हो, यू कैन बिकम अ कॉन्टेंट क्रिएटर, इवेंट होस्ट बन सकते हैं। सिंपली जस्ट विश, आप क्या बनना चाहते हो, हम आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड करेंगे, आपको कॉन्फिडेंट बनाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करेंगे, ताकि आप पब्लिक स्पीकिंग प्रोग्राम्स वगैरह जो हैं, आप उनमें माइक लेकर के स्ट्रांगली खड़े हो पाएं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग एन आरजे, हम आपको मस्ती मीडिया नेटवर्क में सिर्फ आरजे नहीं बनाते हैं, हम एक पूरा पैकेज देते हैं। हम लड्डू का वो क्यूरेटेड बॉक्स हैं जिसमें आपको मन भर के लड्डू खाने का मौका मिलेगा। और हमारे इस मस्ती मीडिया नेटवर्क में दोनों हाथ में लड्डू हैं, वो भी शशि वाले। तो आप आरजे ही नहीं बनेंगे, आप एक पूरा छोटा पैकेट बड़ा धमाका बन के निकलेंगे, समझ रहे हैं? एंड यस, ऑफ कोर्स, अगर आपको आरजे बनना है तो डेफिनेटली वो बनने का मौका हम आपको देंगे। अलग अलग लेवल्स में आप सीख सकते हैं, अलग अलग कोर्सेज हैं, उनके अलग अलग फीस है, बट इन सब के लिए जस्ट हैव टू फिल अ फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, और मैंने आपको हमारी वेबसाइट के बारे में बताया भी था। जिन लोगों ने पेन और पेपर लेकर अभी तक नोट नहीं किया था, प्लीज जस्ट नोट द वेबसाइट। आप हमारे एप्लीकेशन फॉर्म के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, दैट इज www.radiomasti.com.sg। ये हमारी वेबसाइट है, वहां पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। प्लस हमें मेल करिए आप अपना एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रो लिख करके।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप। Hit us on the gram. It's Radio Musty 24/7. And don't forget to like our ever buzzing Facebook page, Radio Musty 24/7 Singapore.
3: Check it out. Hey, holy, holy.

0: अबे
1: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके, ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
2: Hi everybody, मस्ती हैंग आउट 2.2 and Friday night, the best part, you know what is? क्या है पता है? What is the best part? कभी कभी प्लान या डेस्टिनेशन याद ही नहीं रहता, एक मोमेंट याद आ जाता है या याद रह जाता है। आज मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग खबर पढ़ी, हिमालय में एक बहुत ही रेयर डायमंड फ्लावर ब्लूम होता है जिसे केंजो कहते हैं। सालों में एक ही बार खिलता है बस ये, और ये इसकी जो हाइट है ना वो इंसानों से भी ज्यादा लंबी होती है। एंड दिस फ्लावर मैंने गूगल किया, मैंने सर्च किया एंड दिस गाइस लाइक व्हाट, ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। सालों में एक बार खिलने वाले ऐसे कितने फ्लावर्स हैं जो इंडिया में हिमालयाज में आपको दिखेंगे और आपको पता भी नहीं होता उन चीजों के बारे में। देखना उसको अपने आप में एक रेयर एक्सपीरियंस है, माना तो यही जाता है। बिल्कुल वैसे ही हर फ्राइडे का जो रूटीन है ना वो ऐसा ही होता है, कभी कॉफी, कभी ड्राइव, कभी जस्ट एक गाना, एक छोटी सी मेमोरी बन जाती है जो आता तो आपके पास लाइफ में एक ही बार है और आप उसको एक बार एंजॉय करने के बाद सालों साल याद रखते हो। जैसे कि मैनहट्टन में शशि ने जो लाइफ एंजॉय करी, बार बार करेगी पर वो एक्सपीरियंस वॉज लाइक वन टाइम लाइफ टाइम पहली बार, और वो एक्सपीरियंस अब दोबारा होगा नहीं क्योंकि वो अपने आप में पहला और आखिरी था, अब तो वो आगे बढ़ेगी, है ना?

0: जापान में रोती हुई औरतों को मिलते हैं हैंडसम हग करने वाले बॉयज।
1: वाओ, हमारे यहाँ तो बस बेटा रो मत ये मिलता है। यहाँ मिलते हैं दो करारे थप्पड़। This is Masti Madness on Radio Masti 24/7.
2: Download Radio Masti 24/7 app to call us instantly or email, WhatsApp, text us from the app.

0: हैंग आउट करेंगे पर थोड़ा हटके। ये है मस्ती हैंग आउट आरजे मुग्धा के साथ।
1: और बस इसी के साथ मस्ती हैंग आउट 2.0 का आज का फ्राइडे एडिशन जो है विद हमारी इंग्लिश विंग्लिश यहीं पे रैप अप करती हूँ मैं। आज का सफर वॉज एब्सोल्युटली प्रिटी जस्ट लाइक हमारी श्रीदेवी है ना। इंग्लिश विंग्लिश ने हमें मुझे एक्चुअली मैंने जब देखी इंग्लिश विंग्लिश मुझे जिंदगी जीने का एक बहुत ही नया नजरिया सिखाया था। मैनहट्टन ने याद दिलाया कि शहर हर वीकेंड और हर सफर यादों से खूबसूरत बनता है। एक जगह बैठ जाएंगे तो आपको हर शहर ईंट पत्थर इमारतों वाला दिखेगा लगेगा। इंग्लिश विंग्लिश ने मुझे सिखाया कि कुछ भी नया सीखने में कोई बुराई नहीं है। आप हेजिटेट करोगे बट देन यू हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। चलिए टेक अ स्टेप फॉरवर्ड है ना, कुछ नया एक्सप्लोर करो, नई जगहों पे जाओ, अपनी रूट्स से जुड़े रहो। बिल्कुल मैं नहीं कह रही कि रूट्स को जोड़ो लेकिन आगे बढ़ो उनको साथ लेकर के। फेवरेट गाना हो, लंबी ड्राइव हो, क्योंकि मंडे को तो देखो यार काम चलेगा, ट्यूसडे भी काम होगा, वेंसडे भी काम होगा, थर्सडे भी काम कर ही रहते, बट देन फ्राइडे के बाद वीकेंड आता है और हम इस दिन काम को किनारे छोड़ देते हैं, घर पे छोड़ देते हैं, है ना। तो बिल्कुल शशि के हाथ के लड्डू की तरह वीकेंड को एंजॉय करो, मन भर के खा लो, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे है, उसके बाद संडे है। 3 दिन का लड्डू का जो ये आपका बॉक्स है, बहुत लड्डू है इसमें, बहुत सारे, खाते जाओ खाते जाओ। मुग्धा को कह दो कि भाई गुड बाय, मिलूंगे अगले फ्राइडे, पर उसके बाद तो मंडे को मिल जाऊंगे। पर फिलहाल के लिए टेक केयर सिंगापुर, गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, एंजॉय योर वीकेंड।
2: सुनो सुनो, स्टार्ट होने लगा, तुम भी

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Josh.

0: सम स्टोरीज आर इजी टू टेल, पर कुछ कहानियां दिल के अंदर ही रह जाती हैं। एक छोटी सी बात पर पेरेंट्स से दूरी, एक प्यार जो कभी कह नहीं पाए, या वो करियर डिसीजन जो आज भी रातों की नींद चुरा लेता है। ऑन मस्ती मीडिया नेटवर्क, वेयर ओपनिंग अ सेफ स्पेस, डियर मस्ती, दिल से, जहां आप लिख सकते हैं वो सब जो आप कह नहीं पाते। हर हफ्ते हम पढ़ेंगे आपके अनोनिमस लेटर्स, और कभी कभी एक गाना कह देता है वो बात जो लफ्जों में नहीं होती। बिकॉज समटाइम्स रेडियो पर बैठा एक अनजाना इंसान आपको दुनिया से ज्यादा समझ लेता है। सो राइट टू अस, डियर मस्ती, दिल से।
1: It's the best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

सिरहाने को छोड़ाया, तोड़ाया ख्वाब किसी का, जाने क्या छोड़ा।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

0: पहुंचे गया एग्जिट पर और गाने आ गए नॉनस्टॉप म्यूजिक नॉनस्टॉप मस्ती ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
1: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
2: चेक इट आउट
3: इट्स द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड प्लेइंग ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव हैव अ मस्ती भरा वीकेंड

0: नमस्कार सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर चेक इट आउट
3: द परफेक्ट रेसिपी फॉर यू टू अनवाइंड मस्ती वीकेंड्स ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7 लाइव

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय,
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल, इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग,
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा।
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप,
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव,
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime. Just

सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे चश्मे का पहरा। ये चांद सा रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, कैसे देखूं तेरी आंखें, आंखों पे

0: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव पर मैं हूँ अंतरा आपके साथ।
1: मैं आरजे अनु पर मस्ती मॉर्निंग शो पर आपके साथ।
2: लीजिए समर आ गया है लेकर यादों का कारवां।
0: आपने इनकी आवाज तो सुनी है, अब क्या आप अपनी आवाज अपने ही शो के जरिए हमारे लाखों लिसनर्स तक पहुँचाना चाहेंगे? स्टेज फियर को भगाना हो या पैशन को आगे बढ़ाना हो, इट्स इम्पोर्टेंट टू स्टार्ट विद द राइट ट्रेनिंग। The RJ Academy at Masti Media Network is now open for you. That too with a hybrid model for your convenience. 12 hours training per level. Flexible, individual focused syllabus offered for 14 years old and above. Selected trained voices to get an opportunity to host live on Radio Masti 24/7. Email a brief intro to info@radiomasti.com.sg requesting for an application form.
3: Good morning!
4: रात अकेली है
5: तो क्या हम

0: जब एक धुन से सांस का पता चल जाता था, जब एक मिस्ड कॉल से आवाज का पता चल जाता था, घिसी हुई वीडियो टेप्स पर बनी हमारी क्रिस्टल क्लियर यादें,
1: आई लव यू रसना,
0: समोसा पैटीज, फूटी लिमका, फ्लेम्स से लेकर स्लैम बुक्स तक, झूठी बॉटल से कोल्ड ड्रिंक पीने को इनडायरेक्ट किस समझने वाले दिन। Your dose of 90s nostalgia, musty 90s mixtape with aapki 90s wali antra. Thursdays 11 a.m. onwards only on Radio Mercy 24/7 live.
2: Raat akeli hai, aankhein bandi hai. Raat akeli hai to kya? Hum to aap.

0: बात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं। जोश में रहो।
1: Not all music is loud. Some songs just sneak in.
2: What?
1: Makes you smile, hum along, and feel good. Welcome to Masti Unplugged. Your indie acoustic playground on Radio Masti 24/7.
0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आप

यहाँ से कहाँ जाऊँ, कहाँ मैं छुप जाऊँ, ये आधा सा दिल मैं कैसे लगाऊँ, हूँ खुद से जुदा।

0: रात अकेली है तो क्या, हम तो आपके साथ हैं।
1: जोश में रहो।
2: अच्छा नहीं तो जाओ जाओ, अरे जाओ ना।

0: रात भी बाकी है, मगर अभी रात अकेली है। जोश में रहो।
1: मैं आ गया तेजा, मैं तुम्हें ये बताने आया।

0: नशा है। और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना,
1: रात अकेली है।
2: जोश में रहो।
3: कह दूं तुम्हें
1: हाँ
3: या चुप रहूं,
1: ना
3: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है

आखिरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।

से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, अगर उससे बातें करनी है तो फिर नजर झुका के करे, तो फिर नजर झुका के करे।

0: ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते, गालिब जिंदा होते तो तेरे लिए लिखते।
1: जादू है, नशा है
2: और गानों से मदहोश करने के लिए हम है ना।

0: इफ वीकेंड वाज अ गाय?
1: वो आ गया, देखो वो आ गया।
0: इफ वीकेंड वाज अ गर्ल? इफ वीकेंड वाज अ फिल्मी डायलॉग?
2: स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
0: एंड इफ वीकेंड वाज एन ऐप?
3: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
4: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
5: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
6: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव।
0: How to make best of weekends that travel faster than light. Tune into our Musty Weekends on Radio Musty 24/7 Live, the perfect recipe for you to unwind, keeping body entertainment close to you, anywhere, anytime.

जाने को छोड़ आया, तोड़ आया ख्वाब किसी का, जाने क्या छोड़ आया।

0: कहीं कोई चाहता है 105 बच्चे।
1: बेबी बूम नहीं, बेबी सुनामी। क्रेजी दुनिया, क्रेजी खबरें और हमारा ये क्रेजी शो। दिस इज मस्ती मैडनेस ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: डाउनलोड रेडियो मस्ती 24/7 ऐप टू कॉल अस इंस्टेंटली और ईमेल, व्हाट्सएप, टेक्स्ट अस फ्रॉम द ऐप।
3: Perfect recipe for you to unwind. Musty weekends only on Radio Musty 24/7 Live.

0: साहब सत श्री अकाल गेम जय सिंगापुर सारू जय
1: नो टॉकिंग अलाउड सिर्फ म्यूजिक बोलेगा बैक टू बैक गाने ओनली ऑन मस्ती म्यूजिक कैफे
2: रेडियो मस्ती 24/7 लाइव अ पार्ट ऑफ मस्ती मीडिया नेटवर्क सिंगापुर
3: चेक इट आउट
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
5: शाम की चाय हो ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग
4: हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ हेल्दी खाओ प्रोटीन खाओ
5: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर
2: जीजी
5: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com प्रीमियम कैश्यूज कैलिफोर्निया आमंड्स पिस्ताचियोस पम्पकिन सीड्स मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com
2: GGMart योर पर्सनल ग्रोसर
1: Best of Bollywood playing on Radio Masti 24/7 live. Have a masti bhara weekend.

जब जब दर्द का बादल छाया, जब गम का साया लहराया, जब आंसू पल को तकाया, जब ये तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तो क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं, वक्त ने सबको बांटे हैं। थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा। आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तू ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तो क्यों रोता है।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: लाइफ थोड़ी बोरिंग लग रही है, टेंशन नहीं लेने का। टाइम फॉर योर थेरेपी सेशन, मस्ती का मंत्रा विद आरजे अंतरा, जहां न्यूज है फिल्मी, गॉसिप है स्पाइसी और म्यूजिक है फुल ऑन मस्त। बिकॉज हैप्पीनेस का असली मंत्रा लाती है आरजे अंतरा, हर ट्यूसडे सुबह 7 बजे, ओनली ऑन रेडियो मस्ती 24/7।
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: शाम की चाय हो, ऑफिस का ब्रेक हो या लेट नाइट बिंज वॉचिंग,
2: हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन खाओ।
3: हेल्दी मंचिंग का परफेक्ट पार्टनर अब सिर्फ एक क्लिक दूर,
4: जीजी।
3: कृषि वल नट्स ओनली ऑन GGMartOnline.com। प्रीमियम कैश्यूज, कैलिफोर्निया आमंड्स, पिस्ताचियोस, पम्पकिन सीड्स, मखाना और भी बहुत सारे होलसम हेल्दी ऑप्शंस। बस लॉग ऑन कीजिए GGMartOnline.com।
4: GGMart, योर पर्सनल ग्रोसर।
5: Perfect recipe for you to unwind. Musty Weekends only on Radio Musty 24/7 Live.